0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है वल्ला।

इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए वल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, it's hot.

नी जा बुरा कर दे हाँ, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

एक कहानी सुनोगे? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन स्वागत करती है आपका राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और एक प्यारी सी कहानी आपको सुबह सुबह सुनाना चाहूंगी मैं। वो कुछ इस तरह से कि एक रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे। एक की ट्रेन 6:30 बजे आई सुबह के, दूसरे की ट्रेन 7:15 बजे आई, और फिर तीसरे की ट्रेन जो है वो 8:45 AM को आई सुबह। ठीक है, अब कुछ ट्रेन्स फास्ट थी, कुछ ट्रेन्स काफी सारे स्टॉप्स लेते हुए आई, कुछ ट्रेन्स का पूरा रूट ही लंबा था, और कुछ ट्रेन्स जो है वो बहुत दूर के शहरों से आई है। लेकिन यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा वो 8:45 वाली ट्रेन जो सबसे लास्ट में आई कि भाई तुम 6:30 बजे क्यों नहीं आ सकते थे, तुम क्यों इतना लेट आए। क्योंकि लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन का अपना एक रूट होता है, अपना एक डिस्टेंस होता है, वो अपने स्टॉप्स कवर करके आएगी और वो उतना ही टाइम लेकर आएगी। लेकिन एज ह्यूमंस हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं, सिंपल सी बात, हम किसी और की जब अचीवमेंट्स देखते हैं या फिर उनके माइलस्टोन्स देखते हैं, जैसे कोई घर ले रहा हो, कोई बिजनेस बना रहा हो, कोई कामयाब हो रहा हो, कोई शादी कर रहा हो, और सडनली हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इन सब में। लेकिन नहीं, आप कहीं पीछे नहीं हो, आपका तो रूट ही अलग है ना। आपने थोड़ी ना कोई और स्टेशन से शुरुआत की थी ना, आपके वो सिग्नल्स थे, आपके ट्रैक्स अलग थे, आपके डिलेज अलग थे, आपका सपोर्ट अलग था, आपके वो तूफान अलग थे, तो आपका अराइवल टाइम उनके साथ ही कैसा हो सकता है। नहीं, शायद आप लेट नहीं, शायद आपका जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बस कभी कभार इस कंपैरिजन के पूरे झमेले में या फिर इस ख्याल में आप आ जाओ तो यही याद रखना कि आप लेट नहीं हो, आपका रास्ता अलग है। पर इसी खूबसूरत ख्याल के साथ दिन की शुरुआत करते हुए मैं सिंपली आफरीन माइक से दिल तक राइटर ऑन मिर्ची आपका स्वागत करती हूँ। बने रहेगा मेरे साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milchi. Escabana, poscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. Navidva la murga. Milchi, murga.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर्फ तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: देखो दोस्तों, कतर को आप सिर्फ ऑयल और गैस की कैटेगरी से जानते हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग अचीवमेंट सामने आई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की खबर
1: क्या खबर कतर,
0: ये कहती है दैट फोर्ब्स की 2026 की टॉप 100 अरब फैमिली बिजनेस लिस्ट में कतर की 10 फैमिली ओन्ड कंपनीज ने जगह बनाई है। क्या बात है। और इस लिस्ट में काफी बड़े नाम शामिल है जिनमें से पावर इंटरनेशनल होल्डिंग, अल फैसल होल्डिंग टॉप रैंक्स पर नजर आते हैं। लेकिन इन माई लिस्ट, इन दिस लिस्ट देर आर मेनी, जैसे दरवेश होल्डिंग भी है, अल फरदान कॉरपोरेशन, अबू ईसा होल्डिंग, मोहम्मद बिन हमद होल्डिंग कंपनी, अल मुफ्ता ग्रुप, अलमाना ग्रुप, जैदा ग्रुप, मरजूक शमलान अल शमलान ग्रुप, और ये सारे जो है ये इस लिस्ट में इंक्लूडेड है जो टॉप 100 अरब फैमिली बिजनेस, मतलब हमारे कतर के 10 फैमिली ओन्ड कंपनीज इसमें हैं। अब आप सोचेंगे इसमें कि यार स्काई स्क्रेपर्स तो हर कंट्री बना लेती है, लेकिन सस्टेनेबल इकोनॉमी उन लोगों की वजह से बनती है जो जनरेशंस तक बिजनेसेस को ग्रो करते हैं, और यही बिजनेसेस, यही फैमिली बिजनेस का नाम इस लिस्ट में मौजूद है। वेल, यहाँ पर ये जितने भी मैंने लिस्ट बताई है, 10 नाम बताए हैं, अगर आप इससे जुड़े हुए हो, आप इसमें काम करते हो, तो समझ जाइए भाई आपका जॉब कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही सेफ और सिक्योर और बहुत सही जगह पर है। एंड इफ यू आर इन दिस लिस्ट, इफ योर कंपनी इज इन दिस लिस्ट, लेट मी नो, 5000 1896 पर कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए क्या है, कुछ रूल्स एडवांस में अगर आप जानो ना तो ये आपको घाटे से ही बचा सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की खबर में क्या है जरा देखते हैं।
1: क्या खबर कदर?
0: देखिए खबर तो ये कहती है दैट कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रेसिडेंसी कैंसिलेशन के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड जो होता है वो 30 दिन से घटाकर सिर्फ 14 दिन कर दिया है। यानी आपका QID अब कैंसिल हो चुका है एंड यू नीड टू टेक एन एग्जिट, तो आपके पास अब एक महीने का वक्त नहीं है, आपके पास सिर्फ 14 दिन का ही वक्त है, वहीं पर आपको यहां से निकल जाना है 2 हफ्तों में। लेकिन देखिए अगर 14 दिन के बाद स्टे होता है तो क्या ये QID होल्डर्स के लिए, तो उनको हर दिन का 10 कतरी रियाल फाइन लगेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात QID होल्डर्स की। लेकिन ऐसे कई बार होता है कि हमारे विजिटर्स आते हैं रहने के लिए एंड कभी कभार ध्यान से निकल जाते हैं कि यार एग्जैक्टली डेट की एंट्री क्या थी और फिर एग्जिट क्या है, और हो सकता है किसी वजह से कि आप आगे की टिकट निकालते हैं उनकी एग्जिट की टिकट। तो याद रखिएगा हर ओवरस्टे के लिए आपको 200 कतरी रियाल पर डे का फाइन लग सकता है। यस, ऐसा कई बार हुआ भी है, एक दिन की वजह से चूक गए होंगे या फिर 2-3 दिन की वजह से चूक गए होंगे, लेकिन एकदम से इतना बड़ा अमाउंट फिर आपको एयरपोर्ट पर जाकर देना पड़ता है। और ऐसा होता है ना कि आप जब यहाँ से जा रहे हो तो अच्छी यादों के साथ में जा रहे हो और बड़ा स्मूथली, हु डज नॉट वॉन्ट देयर ट्रैवल टू बी एब्सोल्यूटली स्मूथ। तो जब ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो कोई भी आपके ट्रैवल में परेशानियां नहीं आएगी। और कैसे आ सकती है, हमारे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 76 E-gates भी आ गए हैं इमिग्रेशन प्रोसेस को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए, एब्सोल्यूटली फास्ट ट्रैक। मैं हूं आफरीन, आपके साथ ऐसे ही अपडेट्स लाते रहूंगी राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। माइक से दिल तक बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: जानते हो, जिंदगी के सबसे मुश्किल रिश्ते वो नहीं होते जो टूट जाते हैं, मुश्किल तो वो होते हैं जो ना पूरे मिलते हैं ना पूरे बिछड़ते हैं। और इसी बात पर जॉन एलिया साहब का एक कमाल का शेर याद आ रहा है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो मिल गया होता या मिला ही ना होता। क्या बात है, जब कहानी खत्म भी नहीं होती और आगे भी नहीं बढ़ती, ना वो पूरी तरह अपने होते हैं ना पूरी तरह गैर, और इसी बीच की जगह का नाम है याद। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch for EV Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual Media Partner, Rehab Media.
1: Summer Camp Partner, Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
2: Call 5501-7739.
1: Gifting Partner, Al Mufta Group.
3: Oh yes, it's Mirchi Helpline. Tell me.
4: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ. नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता. क्या करूँ?
3: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले.
5: मस्त जोक मारा रे. ये हंस रहे हलकट हंस.
6: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए? तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स

देखिए कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी देखकर रिलैक्स करते हैं, कुछ लोगों को रोमांटिक मूवीज का शौक होता है, तो एक और कैटेगरी है जिन्हें मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस में अपना एंटरटेनमेंट नजर आता है। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो Z5 पर आई ब्राउन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अप टू सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और करिश्मा कपूर हमारी 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस, शी इज बैक, लेकिन इस बार ना नॉट इन अ ग्लैमरस अवतार, दिस टाइम नॉट इवन इन अ किसी लाइट हार्टेड रोल। She steps into the shoes of Rita Brown, a tough detective investigating a high-profile murder case in the mysterious bylanes of Kolkata. देखिए ये सिर्फ एक murder mystery नहीं है, Brown is something more than that. हर character अपने secrets लेकर चल रहा होता है, हर clue एक नई layer खोलता है और हर episode आपको एक intellectual roller coaster पर ले जाता है. Well, this series Brown is directed by Abhinay Deo. The series is beautiful. It blends suspense, human psychology and social commentary. Karishma Kapoor yahan par delivers a compelling performance supported brilliantly by Surya Sharma and Jishu Sen Gupta. Dekhiye aapka idea of entertainment, if it's not just finding the killer but understanding the human mind behind the crime. Aise kuch log hote hai na jo ye crime thrillers ko bahut seriously lete, then definitely Brown on Z5 deserves a spot on your binge watch radar. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Murga. Navir bala murga. Mirchi, murga. Murga.
1: Alo? Alo?
2: Ama bhai. अब मुझे अब पता चला
1: भाई कौन बोल रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भाई।
2: अब मुझे अब बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: मुझे अब बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे मुझसे कह रहा
1: बता दो भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है।
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
1: अबे भाई कौन लताशा।
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया।
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
2: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था।
1: तो भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा।
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था। मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था। बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा। अबे सुनने का मौका नहीं दिया। मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
2: तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या। 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा।
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई।
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया। मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने आसवा दिया टेंशन अलग दे दिया एंड में आके
0: कुकड़ू कू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: चलिए दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर कोई आपसे पूछे कि कतर की पहचान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे हॉस्पिटैलिटी, शायद आप कहेंगे फैमिली वैल्यूज, शायद अरबिक लैंग्वेज, या फिर वो ट्रेडिशनल अटायर जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक कहानी है, एक विरासत है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल आइडेंटिटी की, और इसी सिलसिले में हिवारी इनिशिएटिव एक बहुत ही अहम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहा है। आज जब दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, तब अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोग्रेस करना जरूरी है ऑफकोर्स, लेकिन अपनी रूट्स को याद रखना भी उतना ही जरूरी है ना। हाल ही में हमने देखा कि कतरी कल्चर और ट्रेडिशनल अटायर को यूनाइटेड स्टेट्स में प्राउडली इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सिर्फ कल्चरल प्रमोशन नहीं था, ये एक मैसेज था ड्यूरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप। देखिए, अ नेशन बिकम्स मेमोरेबल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट इट बिल्ड्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट इट प्रिजर्व्स। और यहाँ पर ना मीडिया का रोल ना बेहद पावरफुल हो जाता है। मीडिया सिर्फ हेडलाइंस नहीं देता, मीडिया स्टोरीज को जिंदा रखता है, मीडिया जनरेशंस को कनेक्ट करता है, और मीडिया दुनिया को बताता है कि हम कौन हैं, किन वैल्यूज पर खड़े हैं। जब हम लोकल ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जब हम हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम यंग जनरेशंस को अपनी कल्चर से जोड़ते हैं, तब हम सिर्फ कंटेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमें बिलोंगिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर तक की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि मुल्क इनोवेशन और हेरिटेज इन दोनों को साथ लेकर चल रहा है, फ्यूचर की तरफ देखते हुए भी और अपनी पहचान को मजबूती से थामे रखते हुए भी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कतर। मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
1: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है.
0: Catch Officer Brown.
3: Officer Brown.
0: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
4: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM
6: मिर्ची वन. इट्स हॉट. Authentic, original, and better than our right.

0: मुझे सुनने वाले सारे पेरेंट्स जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की खबर आपके लिए है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज की खबर
1: क्या खबर कतर?
0: कुछ ये कहती है दैट कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक नई स्कूल फीस पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी प्राइवेट स्कूल की फीस इंक्रीज अप्रूव होती है तो उसका असर पेरेंट्स पर तुरंत नहीं पड़ेगा। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन कतर पेरेंट्स को मिलने वाले हैं पूरे 18 मंथ्स का नोटिस पीरियड बिफोर द न्यू फीस एक्चुअली किक इन। मतलब अगर फी हाइक अप्रूव हो भी गया हो तो आपके पास 1.5 साल होगा अपना बजट प्लान करने के लिए, बच्चे को उसी स्कूल में कंटिन्यू करवाना है या किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। नो सडन सरप्राइजेस एट ऑल। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए फीस इंक्रीज अप्रूव करने से पहले मिनिस्ट्री स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन रेट भी इवैल्यूएट करेगी। सिंपल वर्ड्स में, सिर्फ हमें फीस बढ़ाना है कहने से काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी अ मेजरेबल जस्टिफिकेशन। देखिए, दुनिया भर में एजुकेशन इन्फ्लेशन एक रियल चैलेंज बन चुका है। पेरेंट्स ऑफन फील करते हैं ट्रैप्ड बिटवीन क्वालिटी एजुकेशन एंड राइजिंग कॉस्ट। लेकिन कतर का ये मूव एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस समथिंग, इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसे फाइनेंशियल प्रेडिक्टेबिलिटी। और बिलीव कीजिए, देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी is often more valuable than affordability itself, क्योंकि जब आपको पहले से पता हो कि ठीक है 18 महीने बाद क्या होने वाला है तो पैनिक की जगह जाहिर सी बात है लोग प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। मतलब साथ ही साथ अगर फीस इंक्रीज भी हो रही है तो काफी अच्छा वक्त दिया है फॉर द पेरेंट्स आउट देयर। तो सुन लिया ना आपने, मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी सच में। अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: देखो, अगर मैं कहूँ कि कतर की एक ऐसी अचीवमेंट आई है जो ना फुटबॉल से जुड़ी है ना ऑयल और गैस से, लेकिन फिर भी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और कतर की एक बड़ी अचीवमेंट सामने आई है.
1: क्या खबर कतर?
0: दैट कतर का हमद पोच एक और बड़ी अचीवमेंट लेकर आया है. वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमद पोच ने 8th रैंक ग्लोबली और 2nd रैंक गल्फ रीजन में हासिल की है. क्या बात है. देखिए, अब ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है दोस्त, ये बताती है कि दुनिया भर के शिप्स को लोड अनलोड करने में पोर्ट कितना फास्ट, एफिशिएंट और रिलायबल है. मतलब जहां दूसरे पोर्ट्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस, शिपिंग रूट डाइवर्जन्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से जूझ रहे हैं, वहीं हमद पोर्ट ने अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव की है. देखिए, जब हम सुपरमार्केट से कोई इम्पोर्टेड चॉकलेट उठाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करते हैं या शोरूम में लेटेस्ट कार देखते हैं, उस जर्नी के पीछे कहीं ना कहीं हमद पोर्ट का रोल होता है. कतर के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का मेजर हिस्सा इसी पोर्ट से गुजरता है. और एक फैसिनेटिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं तो 2017 के ब्लॉकेट के बाद हमद पोर्ट ने कतर की इकोनॉमिक रेजिलियंस का सिंबल बनकर दिखाया है. आज की रैंकिंग उसी लॉन्ग टर्म विजन का रिजल्ट है. दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स कॉल स्ट्रेटजिक फोरसाइट. मैं हूं आफरीन आपके साथ, बस इसी तरह से अचीवमेंट्स, हेडलाइन क्या होते हैं और लेकर आते रहूंगी यहां पर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स. बने रहिएगा माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे अरे मामू मिर्ची हेल्पलाइन बता सवाल क्या है।
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो बॉस, वीकेंड है, आप कतर में हो, बोर होने का कोई चांस नहीं है। ये मैं अक्सर कहती हूँ जो लोग मेरे यहाँ पर विजिट करने आते हैं, कतर घूमने के लिए आते हैं, और जब मैं उन्हें कतर घुमाती हूँ ना, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि देखो, मैं जहाँ जहाँ आपको घुमा रही हूँ ना, वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं लगते, वो चीज़ें देखने के लिए पैसे नहीं लगते। जैसे आप कोई दूसरी टूरिस्ट कंट्रीज चली जाइए, बी इट एनीथिंग, या आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन कोई चीज़, कोई अट्रैक्शन देखना है, कोई खूबसूरत चीज़ अगर कोई बनी हुई है या कहीं से नज़ारा अच्छा दिख रहा है, तो वो जगह पहुँचने के लिए भी आपको पैसे देने होते हैं, एंट्री टिकट होती है। ये हमारे कतर में नहीं है, और क्योंकि वीकेंड आ गया है, आप कतर की खूबसूरत जगहों पर तो जा ही सकते हैं। मीना पोर्ट है, कतारा है, लुसैल का वाटर फ्रंट है, लेकिन अगर इवेंट्स की बात करें तो मैंगो एग्जीबिशन है, ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ ये शुरू होने वाला है, डोंट मिस आउट ऑन दिस। और क्योंकि फीफा का एक वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बस कतर फैन जोन, ये विजिट कतर का अलमाहा आइलैंड पर है, यहां पर जाकर आप फ्राइडे की मैच जो है ये देख सकते हो। सो वेल, कतर में तो काफी सारी चीजें हो रही है। मैचेस के बारे में बात करें तो मॉल ऑफ कतर ओएसिस स्टेज पर भी हो रही है, एक तरफ हमारे डीएफसी में भी मैचेस चल रही है, सो हर जगह इट्स जस्ट बजिंग, एंड वीकेंड का तो एक अलग ही नशा रहता है हमारे कतर में। मीनवाइल आफरीन के साथ जुड़े हुए हो माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Mirchi, burga. Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: हाँ जी
2: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
1: तीनों आ गए
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए। हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
2: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
1: क्या तरीका है,
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो? लिया हुआ
2: अनिल बंसल आप ही हैं।
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप। एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार,
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार, तरीका आप।
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको। यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने,
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा।
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पावर्ड बाय आईपे, बेस्ट रेट, नो स्ट्रेस, आईपे वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपे, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Good Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट, चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एसदानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी, हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाना मिल्क लबान योगर्ट। एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतर लव्स। रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून।
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
6: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
7: Call 5501-7739.
6: Gifting partner Al Mufta Group.

देखिए, जब भी हम कोई नए कंट्री में या फिर कोई नए शहर में जाते हैं तो गूगल मैप्स हमें रास्ता तो दिखा देता है, लेकिन उस जगह की असली कहानी एक सही टूर गाइड ही सुनाता है। और कतर टूरिज्म ऐसे ही स्टोरी टेलर तैयार कर रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक आप सुन रहे सिंपली आफरीन को। और खबर कुछ ऐसी है दैट कतर टूरिज्म ने टूर गाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। 18 साल या उससे ऊपर के रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए 5 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जनरल लाइसेंसिंग मॉड्यूल कंडक्ट किया जाएगा। प्रोग्राम कंप्लीट करने पर पार्टिसिपेंट्स को कतर टूरिज्म की तरफ से ऑफिशियल टूर गाइड का लाइसेंस भी मिलेगा। वेल, इसके साथ ही 13 से लेकर 17 साल के यंगस्टर्स जो है इनके लिए भी यूथ टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम ये 18 जुलाई से लेकर शुरू होने वाला है और 8 से 12 साल के बच्चों के लिए भी है। इनफैक्ट हाउ इंटरेस्टिंग नहीं, यंग टूर गाइड समर कैंप ये 19 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक चलेगा। मतलब बच्चों को समर्स में अगर आप कहीं प्लान नहीं कर रहे हो तो बिजी रखने का बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है। एंड स्पेशली नाउ ना फीफा वर्ल्ड कप के बाद जब कतर में हुआ, दुनिया भर में लोगों को लगा कि यार कतर क्या चीज है, देखना चाहिए। तो बस जब कोई विजिटर यहाँ पर आए तो कोई उनसे सूक वाकिफ की कहानी बताए, पर्ल डाइवर्स की कहानी बताए, हमारे कतर में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बदला है उसकी सारी कहानी बताए, तब जाके हमारे कतर की अहमियत और भी ज्यादा कोई विजिटर के सामने बढ़ जाएगी, है ना। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट अराउंड मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए, मैं मानती हूँ कि जिंदगी में रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच खुद की इम्पोर्टेंस भूल ना जाना ये भी तो जरूरी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। और इसी खूबसूरत ख्याल पर बशीर बदर साहब का ये शेर आपके लिए।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर में मिल जाए तो दरिया दरिया नहीं रहता। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही है इन्होंने। रिश्ते जरूर रखिए, लेकिन इतने में मत भूल जाइए कि आप अपनी पहचान ही मिटा दें। हर दरिया की अपनी रवानी होती है और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद। इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: जानते हो, जिंदगी के सबसे मुश्किल रिश्ते वो नहीं होते जो टूट जाते हैं, मुश्किल तो वो होते हैं जो ना पूरे मिलते हैं ना पूरे बिछड़ते हैं। और इसी बात पर जॉन एलियट साहब का एक कमाल का शेर याद आ रहा है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो मिल गया होता या मिला ही ना होता। क्या बात है, जब कहानी खत्म भी नहीं होती और आगे भी नहीं बढ़ती, ना वो पूरी तरह अपने होते हैं ना पूरी तरह गैर, और इसी बीच की जगह का नाम है याद। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
2: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
1: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड आई, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आई, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए? चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी

0: टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
1: अबे लल्लू ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: मिर्ची फ्रेश माल
1: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: सलाम नमस्ते, क्या हाल चाल कतर वालों, आ चुकी हूँ मैं मिर्ची वीकेंड वाइब्स लेके, यानी कि जहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीकेंड्स पे होने वाले बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में, एग्जीबिशंस के बारे में, शो, सब कुछ मेरे साथ। यहाँ पे बातें होंगी, कुछ रिव्यूज भी बताए जाएंगे मूवीज के एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी खोले जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, बस मेरे साथ बने रहना, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ बने रहिए, सुनते रहिए मुझे, पैरन एंजॉय करिए। बाय बंजारा, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & 0।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना वन।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milchi, burga. Hello.
2: बेटा घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
2: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला जाएगा।
1: अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
1: अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
1: अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटे देख, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
1: माता जी से बात करा दीजिए।
2: बेटे आजा, आजा बेटे।
1: अंकल, माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बाद।
2: बेटे कोई गलती हो या देख तो बेटे माफ करा दे, ऐसे नहीं जाते।
1: अंकल, मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: मेरे बात
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो, हेलो
1: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: हेलो बेटा, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल, आपका बेटा नहीं हूं मैं।
2: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
1: आपने नंबर क्या मिलाया मेरे बेटे?
2: कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे।
1: अरे अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
1: क्यों?
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
1: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया। चीख चीख के
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई? अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बचपन में पढ़ा था कि मैंगो इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. और वो बात शत प्रतिशत सही थी, क्योंकि जैसे ही आप मैंगो की एक बाइट मुंह में लेते हैं और वो टंग पे जब वो टेस्ट बड के साथ मिलती है तो आहा आनंद आ जाता है. इतना मजा आता है कि मानो ऐसा लगता है कि इस जिंदगी में हमने ऐसी चीज खा ली जो शायद अमृत के समान है. लेकिन अगर बात करें एक ऐसे ही फेस्टिवल की जो आपके मुंह में अभी इस समय पानी आ रहा है, नो, और आपको आए क्यों ना, क्योंकि हम्बा फेस्टिवल होने वाला है. हम्बा फेस्टिवल एग्जीबिशन जो होती है, मैंगो एग्जीबिशन, वो होने जा रही है 2026 की सूक वाकिफ में, जहां पे आप हर तरीके का मैंगो एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के साउथ से आता है, चाहे वो नॉर्थ से आता है, वेस्ट से आता है, ईस्ट से आता है, जहां कहीं से भी आता है ना मैंगो, वो सारे मैंगो आपको यहाँ हम्बा फेस्टिवल में मिलेंगे. इसके अलावा ना आपको बहुत सारे ऐसे काउंटर्स मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंगो का डोसा भी बन सकता है. जी हाँ, मैंगो डोसा, मैंगो मोमोज, इतनी सारी वाइड रेंज मैंगो की आपको मिलेगी, इवन मैंगो बर्गर. जी हाँ, अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते हैं तो 18 जून, हाँ जी, मार्क कर लीजिए डेट, 18 जून को ये एग्जीबिशन शुरू होने जा रही है. अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और ढेर सारे मैंगो खरीद के ला सकते हैं और खा सकते हैं, जूस बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए बट इंजॉय करिए. बाकी मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर ऐसी अपडेट्स के साथ. एंजॉय करिए ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट. Say what?

0: इम्तियाज अली की मूवी रिलीज हो और मैं देखने ना चाहूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ मूवी मैं वापस आऊंगा, एंड ये मूवी इज द सेम एज द टाइटल सेज कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो कोशिश जरूर करता है लेकिन आ नहीं पाता है। स्पॉइलर मैं आपका बिल्कुल नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी इस मूवी को देखने के दौरान आप में बहुत सारे मूड्स के स्विंग्स आएंगे। कभी आपको गूज़बम्प्स आएंगे, कभी आपको रोना आएगा, कभी आप फील करोगे कि What's going on? ये क्या हुआ क्या? I just want to figure it out कि ये कैसे हुआ? आपकी मतलब दिमाग अगर इधर उधर हुआ तो आप हल्की सी स्टोरी मिस कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा अटेंटिव होके ही देखिएगा ये मूवी को। एंड ऑफ कोर्स इम्तियाज अली की मूवी है तो वो हर एक कैरेक्टर में ऐसे जान डालते हैं जैसे कि बस वो मूवी उसी कैरेक्टर के आसपास घूमती है। उनकी मूवी में हर एक इंसान मेन कैरेक्टर है, ऐसा मैंने महसूस किया। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी में देखने के बाद आपको लगेगा कि लड़ाई झगड़ा ये कभी भी काम नहीं आती है, सिर्फ एक ही चीज काम आती है, दैट इज लव, लव, लव, जो पूरी जिंदगी भर हम सबके बीच में रहता है। बाकी आपने अगर नहीं देखी है मूवी तो जल्दी जाके देख के आइए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर बताइएगा, यानी कि मिर्ची ईशा पे, आप मिर्ची वन कतर पे भी हमें बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। हाँ।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, करना चाहते हैं ये काम तो बता दूं आपको एक बढ़िया सा इवेंट। बोर मत होइए यार, आपके लिए लाई हूँ मिर्ची ईशा एक बढ़िया सा इवेंट, समर स्प्लैश। जी हाँ, समर स्प्लैश मिरियाल वाटर पार्क में होने जा रहा है। एक से शुरू हो चुका है, ये 30 जून तक है, आप एंजॉय कर सकते हैं। 6 बजे से लेके रात की 11 बजे तक ये समर स्प्लैश रहता है, जहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो पाव पेट्रोल हो चाहे स्पॉन्ज बॉब हो। इनके आपको मैस्किट के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी, परफॉर्मेंसेज मिलेंगी, आप जरूर एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ। तो प्लान कर रहे हैं शाम को कहाँ निकले, यहाँ जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
2: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
1: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100 on 100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

दिल थाम के बैठ जाएंगे क्योंकि आने वाली 20 तारीख को होने वाला है ऐलान। मिर्ची मूवी अवार्ड्स फाइनल होने जा रहा है 20 को, जहां पे हम देखेंगे कि किसमें कितना है दम। देखिए, ये हम नाप नहीं सकते हैं क्योंकि हर माँ स्पेशल है, हर माँ हार्डवर्क करती है, हर माँ वो सब करती है अपने बच्चे के लिए जो जरूरी होता है, तो हर माँ स्पेशल है हमारे लिए वैसे तो। बट येस, दिस कॉन्टेस्ट इज ऑल अबाउट द क्राउनिंग, द बेस्ट मॉम विल विन। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को अगर जानना है कि बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आपको उसके लिए इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना पड़ेगा हमारे, यानी कि मिर्ची वन कतर पे जाना होगा, जहां पे हो रही है वो सारी न्यूज, वो सारी खबरें, जो चल रहा है, जो हार्डवर्क हमारी लेडीज दिखा रही हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो हमें फॉलो करिए और अपडेट रहिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
2: Aló. Aló.
3: Ama pai. Tu. अब मुझे अब पता चला
2: भाई कौन बोल रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भाई।
3: अब मुझे अब बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
2: भाई
3: मुझे अब बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे मुझसे कह रहा
2: बता दो भाई। अबे
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: अबे भाई कौन लताशा?
3: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया।
2: अबे भाई कौन लताशा? मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा? अबे तो सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
2: तो फोन तूने करा, तूने करा?
3: मैंने क्या फोन मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई?
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों और बहुत मज़ेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं ऐसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM to 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड, सो थर्सडे 9 AM to 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM to 7 PM. तो जाना कहाँ है 3-2-1 कदर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा। अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & Salt.

आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बेमतलब बनी हैं, तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। इस जीवन में बेमतलब कुछ भी नहीं है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हर एक चीज का एक नाम होता है। जैसे आप अगर टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ नर्डल। यस, एंड अगर आप अल्फाबेट्स में देखें आई और जे, जब भी आप लिखते हैं स्मॉल आई और जे तो उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, उस डॉट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ टाइटल। और एक और आपको बता दूं तो अगर आपने कॉफी पी होगी बहुत से कॉफी आउटलेट्स पे, तो वहां पे आपको एक कप दिया जाता है, उसको एक कार्डबोर्ड के कवर के साथ, ब्राउन कवर के साथ कवर किया जाता है, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अजार्फ। अजार्फ, जी हाँ। ये एक स्ट्रेंज सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, बड़ी अजीबोगरीब थी। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची शो, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स ऑल।

0: में चीज स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
2: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: वो बोलते हैं ना, लाइफ में हर एक चीज नहीं मिलती है, कुछ मिलता है कुछ खो देते हैं, बट सब कुछ मिलना इम्पॉसिबल. लेकिन लाइफ में एक चीज जरूर मिलती है, इसे बोलते हैं प्यार. प्यार हम सबको हर जगह से मिलता है, बस हमारी आंखों को परखना आना चाहिए. तो हम उस प्यार को एक्सेप्ट करके हमेशा रख भी सकते हैं, और या उसको ठुकरा के हमेशा के लिए दुखी भी रह सकते हैं. इसलिए वाइजली सोचिए और अपने आसपास जितने भी अपने हैं उनको प्यार बांटिए. जितना समय दे सकते हैं उतना समय देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो आप इन रिटर्न अपने जो प्यार करने वाले इंसान है या जो जिनसे आप प्यार करते हैं उनको दे सकते हैं. प्राइसलेस एंड बेस्ट थिंग. उसके अलावा टाइम की बात करते करते यहां तक हम आ गए कि समय भी हमारा हो चुका है जाने का, आपसे अलविदा कहने का. तो लेती हूं आपसे अलविदा, मिलूंगी अगले वीकेंड इसी समय इसी वक्त. तब तक बाय बाय, टाटा, शबा खैर एंड टूडल्स, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: ओ सब्जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Mirchi, fresh maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। 2 एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपके गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप 1 है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
2: नहीं मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
6: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
5: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
5: Catch Officer Brown.
8: Officer Brown.
5: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे अरे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: यार सच कह रही हूँ, कतर की जो गर्मी है ना, ये बिल्कुल उस रिलेटिव की ही तरह है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई वही रिलेटिव जो दो दिन के लिए कहे लेकिन रहे 3 से 4 महीने तक, नहीं पहले के दिनों में, पहले के जमाने में ऐसा जरूर हुआ करता था। अगर आज की डेट में हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई दफा ऐसा फील होता है कि भाई आज तो वेदर जो है जरा सा ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कार तक पहुंचते हैं ना, लगता है कि किसी ने अवन जो है प्री हीट करके हमें अंदर डाल दिया हो। और अगर आज आप घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीजों को अपने साथ जरूर लेकर चलना है, आपका फोन, आपका वॉलेट, आपकी कीज एंड सबसे जरूरी भाई साहब पेशेंस, क्योंकि इस गर्मी ने कुल मिलाकर हम सबको ऐसा हिलाया है ना, इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आंकड़ा जो है बिल्कुल 50 तक पहुंच चुका है, टेम्परेचर यानी कि डिग्रीज की बात कर रही हूँ। एंड जरा देखिए ये क्या ही कहते हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
0: Well, आपका नाम भी जानते हैं, आपके कारनामे को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपडेट तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन सबसे खास बात जिसे आपको अपडेटेड रखनी है वो ये कि खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीजिए, जो भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखिए। बाकी आपके कलेजे के ठंडक के लिए मैं हूँ, टक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: बेटा, अब घर आजा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
3: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
4: बेटा आजा, देख आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
3: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
4: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चलाएगा बेटे क्या होगा हमारा?
3: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
4: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
3: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
4: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
3: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
4: बेटा देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
3: माता जी से बात करा दीजिए।
4: बेटे आजा आजा बेटे।
3: अंकल माता कहाँ है?
4: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
3: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
4: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
3: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
4: अरे बात मेरे बात,
5: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो
4: बेटे। हेलो
3: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
4: बेटे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
3: अरे अंकल आपका बेटा नहीं हूं मैं।
4: अगर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आज
3: आपने नंबर क्या मिलाया मेरे बेटे?
4: कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे।
3: अरे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
4: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
3: क्यों?
5: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्लाई रहे हो भाई?
3: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
5: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
3: बोलना जरूरी है?
5: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
4: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार सच कह रही हूँ, गर्मी के दिनों में ना ये दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु,
0: पहली बाहर निकलना और दूसरी पार्किंग ढूंढना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त लगता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे लिए निकाल ही दिया है। वेल, इस समर ओल्ड दोहा पोर्ट लेकर आए हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की पूरी सीरीज, जो काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। एंड ये चलेंगे 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर आपको लगता है इवनिंग में आउटिंग या फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ चिल करने का आपको प्लान बनाना है, तो बिल्कुल ओल्ड दोहा पोर्ट आप 101% पहुंच ही सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो मिर्ची की पलटन जो है पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार। खाने पीने का इंतजाम जो है वो बस आप कर लें। लेकिन अगर पार्किंग की बात करें तो मीना डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सेस अब डेली दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्हीकल्स के लिए ओपन रहेगा। मतलब अब पार्किंग का ये जो टेंशन है ये जिंदगी में जरा कम हुआ। एंड सबसे खास बात ये है, अगर मैं वॉले पार्किंग की बात करूं तो अब रेगुलर रेट्स की आधी प्राइस में आप पार्क कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप मिनिमम स्पेंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉले पार्किंग आपको मिल ही जाएगी। बढ़िया जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सारे के सारे न्यू एक्सपीरियंसेस ओल्ड दोहा पोर्ट में मिलेंगे। जाइए, इस गर्मी के दिनों में वो ठंडी का मजा जो है उठाई लीजिए। कलेजे की ठंड, उसी की बात करें। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार ये जो आम है ना, आपको खास एक्सपीरियंस देना बहुत अच्छी तरह से जानता है।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार बस फलों के राजा यानी कि आम, मैंगोज की बात कर रही हूँ मैं। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में तकरीबन 1000 से ज्यादा मैंगो की वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। अल्फांजो, केसर, लंगड़ा, दशहरी, बादामी और क्या नहीं। और हर एक आम जो है अपनी एक अलग सी खास पर्सनैलिटी लेकर आता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा आम प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें इकलौते पीस का वजन जो है तकरीबन 3 से 3.5 किलो होता है और एक पीस आम की कीमत जो है ना वो हजारों में होती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नूर जहान मैंगो, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश में। भाई मतलब नाम ही जो है वो बिल्कुल रानियों वाला है, इसीलिए इसे भारत में क्वीन ऑफ मैंगोज भी कहा जाता है। वेल, अगर आपको लगता है कि भारत के ढेर सारे लेजेंडरी मैंगो से आपकी मुलाकात हो ही जाए, एक बार फिर से आप जो है अपने स्मेल सेंसेशन का इस्तेमाल करते हुए पता कर लें कि कौन सा आम जो है कितना मीठा है, तो सीधा आपको अगर कहीं पहुंचना है तो वो है सुख वाकिफ ईस्टर्न स्क्वायर। 18th of June से लेकर 27th of June तक आप इंजॉय कर पाएंगे हम्बा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया कतर, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। चले जी, आम के रसीले पदार्थ एक बार फिर से जिंदगी में शामिल करने की बारी जो है ना वो आ ही चुकी है। अभी फिलहाल जिंदगी में मिठास बनाए रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100/100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: यार सच कहूं वो भी क्या दिन थे।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार जिंदगी में ना बहुत लोग मिलते हैं, कुछ लोग कई बार बस सफर में मिलते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल में घर बना जाते हैं। स्कूल के वो दोस्त याद हैं जिनके साथ टिफिन शेयर किया, पनिशमेंट शेयर की, सीक्रेट भी शेयर की एंड कभी कभी होमवर्क भी कॉपी किया। क्या दिन थे यार। एंड फिर आए वो कॉलेज वाले दोस्त जिनके साथ सपने देखे, स्ट्रगल शेयर किए, कैंटीन की एंडलेस वो चाय पे चर्चा की और लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों को बस जी लिया, साथ ही यादें भी बना ली। यार सच कहूँ वक्त बदल जाता है, शहर बदल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो भी कभी कभी बदल जाती हैं, लेकिन असली दोस्त जो हैं वो कभी नहीं बदलते। माना कि कुछ वक्त के लिए, अरसे के लिए हम अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं खो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अगर उस स्कूल या कॉलेज के दोस्त का फ़ोन आ जाए ना, ज़रा देखो सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था, जैसे कभी रुका ही नहीं। बस आज उन्हीं दोस्तों की याद आई यार, तो क्यों ना उस दोस्ती के नाम एक शायरी जो है वो अर्ज़ की जाए। देखो दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती तो वादा है उम्र भर साथ निभाने का। तो अगर लगे कि कोई दोस्त जो है इस वक्त याद आया तो उसे मैसेज या कॉल जरूर करना, एंड अगर लगे कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ तो एक गुड मॉर्निंग या हेलो का मैसेज ही भेजना। 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ।
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
3: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं. और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है. हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है. वी गॉट बिगर बजट्स, वी गॉट बिगर मार्केटिंग, वी गॉट बिगर प्लेटफॉर्म्स, और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे, या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं. मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली, एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म. ये तो हमने पहले भी देखा है.
4: नंबर 20.

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी। 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में यह मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स हैं, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. Hello. Hello.
2: Hello Mr. Anil.
1: हाँ जी.
2: Mr. Anil तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए.
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए. हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे हैं?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो? लिया हुआ है.
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार. तरीका आप बच्चे चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.

यार कभी कभी कोई गाना सुनते वक्त एक अजीब सी डेजा वू वाली फीलिंग आ जाती है। मस्कारा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एआर रहमान, इरशाद कामिल, इम्तियाज अली, ये तीनों नाम जब साथ आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही स्काई हाई हो जाते हैं। और फिर जब मैंने ये गाना मस्कारा दोबारा सुना, मेरे दिमाग में एक और गाना अपने आप लूप पे चलने लगा। पता नहीं आपको भी लगता है कि नहीं, लेकिन दोनों गानों में एक ही तरह की शरारत है, एक ही तरह की बेपरवाही, जैसे सुर सीधा चलने से इनकार कर रहे हो। लेकिन फिर ये चार्ट्स आपको याद दिला देते हैं कि म्यूजिक की दुनिया में रूल्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इस हफ्ते नंबर 15 पर है धुरंधर का मैं और तू, जैस्मिन सैंडलर्स का एटीट्यूड, वो रैप वाली एनर्जी और एक ऐसा सोनिक पंच जो किसी और गाने जैसा बिल्कुल नहीं लगता। नंबर 15

एंड देन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मिर्ची टॉप 20 में इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक ऐसा गाना जो हिंदी फिल्म काउंटडाउन में सुनने की शायद किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी, क्योंकि भोजपुरी फ्लेवर है भैया, देसी स्वैगर है, और सबसे बड़ी बात एक भी डबल मीनिंग वाली लाइन नहीं है, सिर्फ मस्ती है, सिर्फ रिदम है, और एक हुक है जो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। कैसे बनी हाय दैया, कैसे बनी फलौरी बिना चटनी, कैसे बनी धमाल 4 का ये गाना। एंड यस, इस फ्रेंचाइज का ये चौथा पार्ट है। वेल इट्स गॉट नील कमल सिंह, ममता शर्मा सिंह, दिस सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू करते हुए नंबर 14 पर, फलौरी बिना चटनी कैसे बनी। नंबर

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दें मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
4: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट
7: Only on Mirchi. It's hot.
8: Number 13.

कभी कभी लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं है, कामयाबी है, सक्सेस। क्योंकि जब कोई फॉर्मूला काम कर जाता है ना, हम उसे सेलिब्रेट कम करते हैं, रिपीट ज्यादा करते हैं। शायद वरुण धवन की कहानी थोड़ी ऐसी ही है। अ डेब्यू विच वॉज एज स्मैशिंग एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड देन उसके बाद मैं तेरा हीरो, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जुड़वा 2, एक के बाद एक हिट्स। लेकिन फिर एक वक्त आया जब ऑडियंस बदल गई। I think it was around 2017 or maybe 2018. सब बदल गया, मगर फॉर्मूला वही रह गया। मुझे बात हमेशा इंट्रीगिंग लगती है। वरुण धवन को एक्टर किन फिल्मों ने साबित किया? एक सुजीत सरकार की अक्टूबर थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दूसरी फिल्म थी ये।

मतलब जिस एक्टर को हम सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर मिलता है। हर स्टार के करियर में एक मोड़ आता है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आप हिट दे सकते हैं कि नहीं, सवाल ये होता है कि आप खुद को सरप्राइज कर सकते हैं कि नहीं। और शायद इसलिए मुझे अगला गाना बेहद पसंद है, क्योंकि हर अच्छी चीज तुरंत पॉपुलर नहीं होती, कभी कभी उसे वक्त देना होता है, कभी कभी उसे लोग बाद में डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा की तरह फिल्म को उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना उसे मिलना चाहिए, लेकिन जिन्होंने देखी है वो उसे छोड़ नहीं पा रहे। नंबर 12 पे दिस इज वो नहीं एन ARR एंड इरशाद कामिल कोलैब। नंबर

0: ये गाना मुझे किसी प्लेलिस्ट ने नहीं दिया, किसी एल्गोरिथम ने रेकमेंड तक नहीं किया। मैं जब धुरंधर देख रहा था, ये गाना अचानक मेरी जिंदगी में आ गया एंड तब से मुझे एक बात बहुत बार रियलाइज हुई है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेलीविजन इज डेड, प्रॉब्लम ये है कि सरप्राइज एलिमेंट मर गया है। एक जमाना था जब हम चैनल्स फ्लिप करते रहते थे, 9XM, MTV, Zoom, B4U Music, और बीच में अचानक कोई गाना आ जाता था। आप उसे ढूंढ नहीं रहे होते थे, वो आपको ढूंढ लेता था। कभी कभी तो उस गाने का नाम तक नहीं पता होता था, लेकिन अगले ही दिन वो गाना दिमाग में घर बना चुका होता था। आज हमारे पास पहले से ज्यादा म्यूजिक है, we've got infinite playlists, infinite recommendations, infinite content, लेकिन शायद कम डिस्कवरीज हो रही हैं, क्योंकि आज हर प्लेटफॉर्म आपको वही दिखाता है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा, और इसी चक्कर में वो चीज जो आपको पसंद आ सकती थी कभी मिलती ही नहीं। पहले हम गाने ढूंढते नहीं थे, गाने हमें ढूंढ लेते थे, शायद इसलिए कुछ गाने वक्त से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें ट्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, एल्गोरिथम्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस दिल तक पहुंच ही जाते हैं। मिथुन द कंपोजर कहते हैं कि उनकी पूरी डिस्कोग्राफी में अगर एक गाना है जो उनके दिल के बेहद करीब है तो वो यही है। रुकुमार राठौड़ जी की आवाज में एक ऐसा गाना जो हर दौर में नया लगता है। दिस इज माई पिक ऑफ द वीक, इट्स फ्रॉम अनवर, दिस इज मौला मेरे मौला।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: ओह यस इट्स मिर्ची हेल्पलाइन, टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
2: लिख नहीं पाता हूँ क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्ला वल्ला वल्ला। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्ला। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधु इस गाने में गाते कम है, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्ला। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधु इस गाने में गाते कम है, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ।

लेकिन फिल्म फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga.
1: Mirchi, murga. Hello? Hello?
2: अब भाई तुम
1: भाई कौन बोल रहा है?
2: अब मुझे अब पता चला
1: भाई कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे अब बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम है मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे मुझसे कह रहा
1: अबे
2: मुझे तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन लताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा
2: हूँ
1: सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा
2: हूँ तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने
2: करा मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करियर वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने अटवा दिया टेंशन अलग दे दिया
3: एंड में आके मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट ए पगला अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यू बॉर्न

अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कट फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है। स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gaana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
0: Suren ke saath only on Mirchi it's hot
1: number 5

0: अजीब बात है ना, कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ सुपर हिट होते हैं और कुछ एवरग्रीन हो जाते हैं, और फिर बहुत ही कम गाने होते हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर लगान ही लगान थी। 25 साल, इंटरव्यू, स्टोरी, स्क्रीनिंग्स, और हम सब फिर से उस दुनिया में लौट गए जहां एक छोटा सा गांव पूरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा था। लेकिन जब भी लगान की बात होती है तो मेरा दिमाग फिल्म पर नहीं जाता, मेरा दिमाग स्टेडियम पर जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का काफी वक्त क्रिकेट ग्राउंड्स में गुजरता है। और मैंने एक चीज हर बार महसूस की है, जब मैच बड़ा हो, जब प्रेशर ज्यादा हो, जब लगता हो कि अब दिल सीधा गले में आ जाएगा, तो भीड़ में कहीं ना कहीं से एक आवाज उठती है, कोई हमसे जीत ना पावे चले चलो, और अचानक हजारों लोग एक हो जाते हैं। और सोचिए, ये गाना 25 साल पुराना है, इट्स 25 इयर्स ओल्ड, फिर भी पुराना नहीं लगता। यू मस्ट बी थिंकिंग, आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि ये जीत के बारे में नहीं है, ये हिम्मत के बारे में, ये उस पल के बारे में है जब दुनिया कहती है कि यार नहीं होगा, लेकिन आप कहते हैं एक बार और कोशिश करके देखते हैं। थैंक गॉड कि जावेद साहब ने आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर के एक सजेशन को खारिज कर दिया।
1: द ट्यून वाज जिर जिर जब जिर जी ना जे नशा नशा नशा नशा देर ना बन दुदा रे ना दे नशा नशा। I got addicted to it. इसे नशा आमिर also got addicted to it. Now we're telling जावेद साहब के इस ट्यून में आपको जो लिखना लिखे नशा नशा नहीं रहेगा,
2: नशा नशा चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग सब नशे में आ गए थे।
3: किसान बारिश हो नहीं रही है, किसान भूखे मर रहे हैं, उन पे 3 बरस का लगान चढ़ा हुआ है, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझसे कह रहे हैं लिखो नशा नशा नशा नशा। भाई ये कैसे हो सकता है?
4: चले चलो मैंने लिखा। अरे नहीं, वो देखिए नशा नशा में क्या फ्लो था, मैं थोड़े दिनों तक ये गाइए इसमें भी फ्लो आ जाएगा।
0: और बस नशा नशा चला गया, जादू रह गया। 25 साल बाद भी हर स्टेडियम में, हर जनरेशन के साथ, हर नए सपने के साथ लगान से चले चलो। Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आमिर खान पीके वॉज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान छिल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजियर हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए। गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोक कर, हर नई एंट्री को देख कर, बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें वाकई टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
2: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
3: अबे लल्लू, ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
4: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: आज मम्मा माशुका नहीं, मम्मा मॉमीज का दिन है। D2 के होटल में आज मिर्ची मॉमी सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। यस, और बारी आ गई है उन 16 मॉमीज को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, जहां पर आज 6 लोगों के सर पर ताज सजेगा। सबसे पहले होंगी मिर्ची मॉमी की विनर, फिर फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, साथ ही साथ मॉम एवरग्रीन, मॉम कॉन्जेनियलिटी एंड मॉम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। कौन बनने वाला है इसका इंतजार कीजिए आज थोड़ी देर में। आपको ये धीरे धीरे सारी हलचल मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पर दिखाई देने लगेगी। एंड आई एम श्योर जीते चाहे जो भी, हर मॉम एक दूसरे को सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि यहां तक पहुंचना भी किसी जीत से कम थोड़े। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी मॉमीज। ये 16 श्रृंगार कर 16 मॉमीज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हैं, एंड हम एक्साइटेड हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड टू ऑल दी मॉम्स, ऑल दी बेस्ट, एंड आई एम श्योर ये एक शानदार सीजन होगा जो अगले साल के लिए और मॉमीज को इंस्पायर करेगा। शुरुआत करते हैं शाम शानदार की मिर्ची पर, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
0: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है, वल्ला।
3: ओए लुक ही

0: इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। 2 एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप 1 है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
1: मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, जिसमें मेरी क्या गलती है।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आ गया नेस्टिंग का सीजन आ गया। यस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कतर के उन समुद्रों की जिसके कोरल रीफ का ध्यान रखते हैं ये टर्टल्स। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने सी टर्टल हैचलिंग रिलीज कर दी है फुवारियत बीच पर। #974 हम आपको बता दें हमारे कतर के जो मरीन एनवायरमेंट की बात हम करें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर टर्टल हैचिंग करी जाती है। और यही वो टाइम है जब ये किया जाता है। मोर देन टू डेकेड्स का टाइम हो चुका है। 2003 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जब सी टर्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और उस पूरे टाइम से लेकर आज तक ये लगातार हर साल एक मुहिम होती है जहां पर फील्ड मॉनिटरिंग से लेकर नेस्ट प्रोटेक्शन हैचलिंग फॉलो अप एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस के साथ साथ किस तरह से नेशनल एंटिटीज को एक साथ लाया जाए ताकि कतर का मरीन कंजर्वेशन जो एफर्ट है वो वेन में ना जाए। और इसीलिए लगातार हर साल ये होता है। इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने फुवारियत बीच के पास हैचिंग एंड रिलीज ऑफ जुवेनाइल हॉक्सबिल सी टर्टल्स की है ताकि हमारे कतर का कोरल रीफ हमेशा एकदम अच्छा रहे। और ये समुद्र के मरीन हेल्थ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी टर्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और हमारे कतर के मरीन एनवायरनमेंट को बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा रखते हैं। और हमें और आपको भी ये चाहिए कि जब हम समुद्र के पास जाते हैं ये जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो हम बिन्स में ही डालें या फिर अपने साथ घर ले आकर बिन्स में डाल दें। मैंने अक्सर देखा है लोग ये अवेयरनेस तो रखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा इस मामले में लापरवाही करते हैं। लेकिन आप उन्हें समझाने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो वो वेस्ट वहाँ फेंका है उसको आप ही उठाकर ले आओ, क्योंकि किसी एक की तो जिम्मेदारी बनती है, शायद वो एक आप ही। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: इस वाली खबर पे तो कुनाफा बकलावा की एक ट्रीट बनती है। अरे भाई, हमारा कतर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मीना रीजन में ग्लोबल पीस इंडेक्स पर रैंक 1 आया है।
1: #974
0: बता दें, नेशनल प्लानिंग काउंसिल ने इस अचीवमेंट को हम तक पहुंचाया है, जहां पर कतर की पोजीशन को नंबर 1 पोजीशन मिली है, जिसमें मोस्ट स्टेबल एंड सिक्योर कंट्री। जिस तरह के भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं, उसमें भी रीजनल एनवायरनमेंट के बावजूद हमारा कतर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका यानी कि मीना रीजन में नंबर 1 पीसफुल कंट्री है। और मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है सर, ये हमारे कतर के उस सेफ्टी सिक्योरिटी को एक तमगा मिला है, जिसके लिए वो पिछले दिनों पूरी दुनिया में जाना गया था। वेल, यहां की सोसाइटी हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, सब कुछ बेहतर हुआ है। और चाहे दिन हो या रात, हम कतर की सड़कों पर बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। पूरे कतर में हमें ये फीलिंग आती है कि ये हमारे घर जैसा ही है, और इसीलिए हम यहां के सारे इंस्टीट्यूशंस को, यहां की हुकूमत को दिल से सलाम करते हैं। और बेसिकली ये जो रैंकिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, उस कंट्री की सिक्योरिटी की बात करें, किस तरह से वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से आ रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इन सारी चीजों पर ये मोहर लगती है। और मीना रीजन में कतर का नंबर 1 होना हमें बता रहा है कि हम जिस देश में रहते हैं क्या मजेदार देश है वो। एंड ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन बनाई जा रही हैं। इस उम्मीद में कि इसके बाद आप एक बकलावा तो हमको खिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
3: 89.6 जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: नहीं पता है मुझे कि गर्मी बहुत है, तो मैं कह रहा हूँ लस्सी पियो, मैंगो शेक पियो, ठंडा पानी पियो, मस्त रहो। लेकिन फिलहाल गर्मी का अब जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और हमें और आपको अपने पानी पीने के पारे को भी बढ़ाना है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: बात करें तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मिनिमम अराउंड 28। हवाओं की बात करें तो इनका रुख भी 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास चल रहा है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, धीरे धीरे गर्मी अपने चरम पर बढ़ती जा रही है और वो टाइम है जब हमें अपने पानी पीने की कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देना है। दोस्तों पानी पीजिए, ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए एंड अपने कानों को एक ड्रिंक दीजिए, वो है मिर्ची वन कतर। तो लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, मिर्ची सुनते रहो मस्त मौला गौरव के साथ शाम शानदार। और मिर्ची मम्मी अवार्ड सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले इस वक्त चल रहा है एंड आपको एक एक हलचल अगर देखनी है तो मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, सारी स्टोरीज पे चेकआउट करते रहो और मिर्ची सुनते रहो। इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
0: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot. Sham Shandar brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh maal.
1: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वैसे यार मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ना यूं तो किसी भी स्टेट में जाता हूं खाने का बहुत मन करता है, तो बहुत सारे वहां के लोकल डिशेस ट्राई करता हूं। लेकिन जब मैं पहली बार लाइफ में कोलकाता पहुंचा था तो मैंने वहां खाई थी लुच्ची भाजी, यानी कि पूरी जो बिल्कुल भटूरे टाइप की होती है लेकिन भटूरा भी नहीं होता है ना, पूरी तरह से पूरी होती है। एंड एक शानदार पीस ऑफ यू नो टेस्ट जो है वो मुझे मिला था वहां। फिर मैंने ट्रैम देखी एंड कोलकाता के लोगों के अंदर एक जो मस्ती थी ना उसको देखकर मैंने कहा ये तो एकदम मेरे शहर जैसा लगता है, यहां कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बेगाना हूं। लेकिन इस वक्त जो कोलकाता में चल रहा है वो सुनकर दिल दहल जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी क्राइम थ्रिलर इस वक्त कोलकाता के बैकग्राउंड पे बनी है। Z5 पर आप इसे देख पाएंगे, नाम है क्राइम थ्रिलर का ब्राउन। यस, इसमें करीना कपूर स्क्रीन पर एक बेहद दमदार नो फिल्टर कॉप बनी है, और उनके इस रफ एंड टफ लुक के साथ उनका ये कमबैक उतना ही दमदार है जितनी ये सीरीज ब्राउन। वेल, बस इतना ही कहना चाहता हूं, इसके 7 एपिसोड्स अब आप हिंदी में स्ट्रीम कर देख पा रहे हो। यस, Z5 पर जाइए, गो वॉच इट नाउ। एंड अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है Z5 का तो जाइए, क्योंकि ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो मुझे देखने को मिली है। इतना ही कह सकता हूं, इस साल चौंका दिया है करिश्मा कपूर ने अपने शानदार कमबैक से। एंड कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं वहां अचानक मर्डर्स पे मर्डर्स हो रहे हैं, एंड उतना ही दमदार है जितनी ये सीरीज ब्राउन। वेल, बस इतना ही कहना चाहता हूं, इसके 7 एपिसोड्स अब आप हिंदी में स्ट्रीम कर देख पा रहे हो। यस, Z5 पर जाइए, गो वॉच इट नाउ। एंड अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है Z5 का तो जाइए, क्योंकि ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो मुझे देखने को मिली है। इतना ही कह सकता हूं, इस साल चौंका दिया है करिश्मा कपूर ने अपने शानदार कमबैक से। एंड कोलकाता

स्ट्रीम करना होगा ये ब्राउन सीरीज, लेकिन फिलहाल के मैं स्मॉल गौर ने याद दिलाया इस वीकेंड आपका ये काम भी हो सकता है पूरा, जहां आप बैठकर बिंज वॉच कर लो। एंड क्या होगी गौरव यार, सही चीज सजेस्ट कर दी, मिर्ची थॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Burga. Navid bala burga. Mirchi burga.
1: Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: Anji.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए. हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: बड़ा आप रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार, तरीका आप.
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर.
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी. एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
1: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेड.
4: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet. Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्तोला गौरव, और मेरे साथ आज यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में खास मेहमान बनकर बैठे हैं रेस्टोरेंट ओनर ऑफ चस्का, यस, जो कि एसडन ओएसिस में है। चाइनीज, इंडियन या फिर आपको मराठी डिश खानी हो, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे चस्का रेस्टोरेंट मिलता है। ग्लेन जो कि इस रेस्टोरेंट को बहुत प्यार से चलाते हैं, और पिछले दिनों हम जब चस्का गए थे तो हमने देखा बॉलीवुड थीम बड़ी छाई हुई है। ये बॉलीवुड थीम के पीछे मुंबई, आपका मुंबई से कनेक्शन या फिर पूरे इंडिया का बॉलीवुड से कनेक्शन?
1: मुझे हमेशा चाहिए था कि जब कोई लोग आए तो उनको घर जैसा फील हो, सो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर में बैठे हैं, एक घर के सेटिंग में बैठे हैं।
0: तो वो नॉस्टैल्जिया फील दिया।
1: तो दो ही चीज चलता है इंडिया में, एक खाना और एक फिल्म। तो इसलिए हमने वो अपने जो पोस्टर्स है उसको भी नाम हमने फिल्मी चस्का दिया हुआ है, ताकि पब्लिक आए, देखे, और मतलब जो सेटिंग है उनको घर जैसा फील हो।
0: वो एक खास बात बताऊं मैं, आप उन पोस्टर्स को देखेंगे उसमें फेमस डायलॉग लिखे हैं लेकिन फिल्मों का नाम नहीं लिखा है, तो आप आपस में वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं। वेल, एक शानदार सेटअप है, बड़ा ही प्यारा सा, कोजी सा। एंड अगर हम बात करें तो इस रेस्टोरेंट में ऐसा और क्या दिया जाता है, या ऐसा ऐसे और क्या करते हैं जिससे हमें घर की फीलिंग आती है?
1: तो हमने इसलिए उसको जो एम्बियंस बनाया है, नॉर्मली टेबल कुर्सियां होती है आप बैठोगे, बट हमने उसको ऐसा एक सेटअप दिया है कि आप एक जैसे घर में, जब पुराने घर में आप बैठते हो कंक्रीट के स्लैब पे, वैसा आप बैठोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो आप एक गांव में आ गए हो। हाँ। एक नॉस्टैल्जिया इफेक्ट होता है।
0: हाँ जी।
1: तो हमने यही कोशिश करने की, यही देने बनाने की कोशिश की कि कोई जब आए तो उनको घर जैसा फील हो। आज के जो मॉडर्न डिजाइन्स हैं वैसा फील नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम यही चाह, पब्लिक को जितना कंफर्टेबल हो उतना हम बनाना चाहते हैं।
0: और खास मेन्यू क्यूरेट किया है जहाँ पर नॉर्थ इंडिया का स्वाद है, साउथ का चस्का है, वेस्ट मुंबई का, मतलब बोले तो वेस्ट इंडिया का, मुंबई से, गुजरात से भी आपने ये सारे फ्लेवर्स जुटाए हैं, तो ये मेनू पर कितनी मेहनत की आपने?
1: देखिए, मैं मुंबई से आता हूँ, मुंबई में सब मिलता है, चाय हो, नॉर्थ इंडियन का हो, हाँ। स्नैक्स हो, हाँ। या महाराष्ट्र का जो भी कॉर्नर में, जैसे हम लोग ने महाराष्ट्र का जो हम लोग ने किया है वो है अपना, हाँ, वड़ा पाव है, जो हम लोग कांदा भजिया बोलते हैं, हाँ, बटाटा भजिया, हाँ, बोलते हैं, हाँ, हाँ। जो मिसल है,
0: सब
1: तो
0: कुछ है,
1: सब कुछ है। तो इसलिए मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दिल्ली के छोले भटूरे भी मिल जाएंगे और कुछ भी मिल जाएगा। तो इसलिए वही हिसाब से हमने हमारे मेन्यू डिजाइन किया है कि आप मुंबई से हो तो आपको सब चीज पता है।
0: क्या बात है। तो वही है कि मुंबई में सबका स्वाद मिलकर आता है, इसीलिए यहाँ पर चस्का रेस्टोरेंट वैसे ही बॉलीवुड को परोस कर आपके साथ खाता है, एकदम घर जैसा स्वाद लेकर आता है, जहाँ पर आप जाकर एंजॉय करते हो और एक कोजी से एटमॉस्फेयर में थोड़ा अपने लिए एक टाइम ढूंढते हो। इस उम्मीद में कि आप इस रेस्टोरेंट में अभी तक नहीं गए तो जरूर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आखिरी बार बात करेंगे ग्लेन जी से, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
3: Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase now. She ain't see the stars in the race. Soon as she got in them.

0: 89.6 पर मैं हूँ आरजे मस्तपाला गौरव, और मेरे साथ आज यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में खास मेहमान बनकर बैठे हैं रेस्टोरेंट ओनर ऑफ चस्का, यस, जो कि एसडन ओएसिस में है। चाइनीज, इंडियन या फिर आपको मराठी डिश खानी हो, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे चस्का रेस्टोरेंट मिलता है। ग्लेन जो कि इस रेस्टोरेंट को बहुत प्यार से चलाते हैं। अगर हम यूएसपी की बात करें तो आपने बोला कि आप डिशेस सब जगह से बनाते हैं, कतर के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?
1: जी, कतर के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं और हमको सभी को फॉलो करना चाहिए। हम भी डेफिनेटली फॉलो करते हैं क्योंकि ये सबके सेफ्टी और हाइजीन के लिए ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एडहियर टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन।
0: हमने देखा है कई बार रेस्टोरेंट को फाइन हो जाता है, रेस्टोरेंट यू नो कम्प्लीटली शट डाउन किए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, कभी कुछ दिनों के लिए। सो बड़ा ध्यान रखता है कतर हमारी और आपकी सेहत का, भी ये कह सकते हैं।
1: जरूर जरूर, ये तो ऑब्वियसली पब्लिक के लिए ही बनाया हुआ है, तो हमारा भी एक ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि वी फॉलो दोज रूल्स और क्वालिटी को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। तो ये सभी रेस्टोरेंट को अपने ध्यान में रखना होना चाहिए और वैसे ही क्वालिटी और जो ये मेंटेन करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और शायद इसी कमिटमेंट की वजह से हम और आप इतना सेफ फील करते हैं, हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं, और शायद कतर में ये जो रूल्स रेगुलेशन है इतने स्ट्रिक्ट है तभी हम और आप सेफ्टी से खाना खाते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहती है, और आप जैसे रेस्टोरेंट जो हमें स्वाद का बेहतरीन तड़का परोसते रहते हैं।
1: बिल्कुल गौरव, हमारे यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में बेस्ट क्वालिटी फूड मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल मिलेगा, और इसीलिए तो चस्का आना है। लेकिन क्योंकि आप एक बैंड सिंगर रह चुके हैं, गा कर बुलाइए।
1: अभी तो प्रैक्टिस छूट गई है।
0: हाँ, चलेगा चलेगा, दिल से गाइए।
1: जितना आता है मैं आपको गा के सुनाता हूँ।
0: जी जी।
1: तो ये गाना खास करके मैं लोगों को बुलाना चाहूंगा कि आइए
0: चस्का रेस्टोरेंट
1: में।
0: ठीक है,
1: तो

0: और स्वाद का सावन बरसेगा चस्का रेस्टोरेंट में. थैंक यू सो मच ग्लेन जी, यहाँ आए, इतनी सारी बातें की, एंड आई एम श्योर पब्लिक आएगी आपके उस बॉलीवुड थीम रेस्टोरेंट को देखेगी, स्वाद का चस्का लेगी और बार बार चस्का लगाकर आती रहेगी चस्का में.
1: थैंक यू वेरी मच गौरव.
0: एंड जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे मिर्ची लिस्टर्स से?
1: मैं यही कहना करूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज चस्का रेस्टोरेंट में आइए और अपने स्वाद को चखिए.
0: हाय हाय स्वाद को चखिए, एंड हाय हाय स्वाद को चखिए, बिल्कुल सही, एंड गिव इट अ ट्राई, आपको मजा आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हम भी बहुत बड़े फूडी हैं और खाना हमको भी अच्छा लगता है. 89.6 मिर्ची टू मिस्टर ग्लेन, होप आप चस्का रेस्टोरेंट जाएंगे, एंजॉय करते रहेंगे और मिर्ची को थैंक यू कहते रहेंगे जो ऐसी चीजें आप तक लेकर आता है. मिर्ची इट्स हॉट.
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बिल्कुल सही गाना है, बिल्कुल सही गाना है। जब बाजार आमों से भरा हो तो अकेले नहीं, दोस्तों के साथ जाते हैं। यस, हम आपको बता दें कि हम्बा एग्जीबिशन बोले तो इंडियन मैंगो एग्जीबिशन की शुरुआत हो गई है। सिंह स्क्वायर सूख वाकिफ में मेला शुरू होगा। अब 18 जून से लेकर 27 जून तक कतर में हर घर में आपको ये मैंगो का स्वाद चखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आम से प्यार करते हैं और सबका फेवरेट होता है फलों का राजा आम, इसीलिए तो कहा जाता है। और खास बात यह है कि हमारे और आपके घरों में हमने बचपन से इस चीज का स्वाद चखा है। मम्मी अलग अलग डिशेज में डालती आई, या यूं कह लें अचार पड़ने से लेकर मिठाई बनाने तक आम का अपना ही एक अलग मजा है। और वो स्वाद चखने का मौका अब हमारे कतर में आपके पास है, जहां पर आप वैरायटी ऑफ आम अल्फोंसो से लेकर केसर, लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी या फिर यूं कह लें भाई अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह के आम सब कुछ आपको मिलेगा। इसके लिए तैयार होइए, थर्ड हम्बा फेस्टिवल बोले तो मैंगो मेनिया के लिए तैयार हो जाइए, जो 18 से 27 जून के बीच आप यहां पर अलग अलग वैरायटी के आम एट अफोर्डेबल प्राइजेस, पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस खरीद पाएंगे और फिर कहेंगे यार अब आम का असली स्वाद चखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी आम खाता है ना वो फिर खास हो जाता है। तो खास बनने का टाइम आ गया, जाइए इस मैंगो एग्जीबिशन से मैंगो खरीदिए, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, हम तक भी पहुंचाइए, ताकि हम पूरे कतर को बताएं कि हमारा फलां के आम हमने आम की वाली डिश खाई थी, अपने आप में अनूठी थी। चलिए इसी उम्मीद में कि इस वीकेंड आप जरूर प्लान बनाएंगे, मस्त मौलो गौरव ले रहा अलविदा मिर्ची। It's hot.
1: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100-on-100 impersonation of Sanjay Dutt. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने। एक नई एंट्री है हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की, विच इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। वर्ल्ड म्यूजिक डे का वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन मिर्ची। शुरुआत करते हैं ऑन दिस काउंटडाउन विद गाना नंबर 10, अनीश सरकार हृदय का गाना। गाने का नाम है उड़ी उड़ी। दो हफ्ते से इस पोजीशन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद द कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी इज ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय नंबर 10।

0: वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन जो ये वाला गाना है आदित्य रिखारी की आवाज, रैवेटोर का म्यूजिक अलॉन्ग विद कुटले खां, ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न म्यूजिक. एक पॉप स्टार, एक फोक आर्टिस्ट और एक कंटेम्प्रेरी उबर कूल प्रोड्यूसर, ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाइए, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली रियली दिल से बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. नाउ इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक तरह से हम सबके एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं कैप्चर करता है. आप मैं हर कोई एक जर्नी पर है. डेस्टिनेशन तो आने वाली है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है और हम इसको तय करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने सपनों के पीछे हम काम कर रहे हैं. एंड समहाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एग्जैक्टली उन फीलिंग्स को कैप्चर कर पाता है जो फिल्म म्यूजिक, बड़े पर्दे पे उतरने वाली कहानियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये वाली फीलिंग मे बी उस किरदार के लिए हो. बट व्हेन इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, वो मेरी आपकी आर्टिस्ट की ऑनेस्ट फीलिंग है. यू नो, वो वाली फीलिंग जब हमारा सपना पूरा भी नहीं हुआ, पर हम इतना तो आगे आ चुके हैं दैट वापस नहीं जा सकते, पर अब इतना आगे भी नहीं आए हैं कि सेलिब्रेट करना शुरू करें. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम. इट्स बाय MC Square, राधिका भिडे एंड विकेट सनी. मे बी ये नाम आपके लिए नए हो, लेकिन जब आप गाना सुनेंगे आई नो इट विल हिट होम. म्यूजिक, गाने के लिरिक्स उस जर्नी को एक्नॉलेज करता है जो मुझे पता है यू आर ऑलरेडी ऑन इट. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अ नई नवेली एंट्री इस गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय MC Square, राधिका भिडे, विकेट सनी, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8. किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए. सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए. आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ. रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए. दुनिया घुमा रही है, मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ. कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ. मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ. मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ. है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है. जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है. वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला. इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है. घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं. जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं. चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं. पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं. टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है. कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है. लिखी है ऊपर वाले ने, जिंदगी है या मौत की सजा. मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है.

खेत जगे सरवाड़े में, एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

0: Ana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi murga.
4: Hello.
5: बेटा आप घर आ जाओ, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
4: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
5: बेटा आ जा, देख आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
4: हेलो
5: बेटा।
4: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
5: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा।
4: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
5: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
4: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
5: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
4: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
5: बेटे देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
4: माता जी से बात करा दीजिए।
5: बेटे आजा आजा बेटे।
4: अंकल माता कहाँ है?
5: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
4: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
5: बेटे कोई गलती भैया देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
4: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
5: मेरे बात
6: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
5: हेलो हेलो
4: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
5: हेलो बेटा, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
4: अरे अंकल आपका बेटा नहीं हूं मैं।
5: अगर आप
4: आतू
5: आ जाएगा तो आज
4: आपने नंबर क्या मिलाया कान में
5: सुनाई दे। बेटा तेज बोल, भाई जी जो चाहिए दे देंगे।
4: अरे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
5: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्यों?
6: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
4: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया। चीख चीख के
6: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
4: बोलना जरूरी है?
6: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
5: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 6 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना बताना है, कोई किस्सा कहानी शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट जो गाने हमें पसंद आते हैं ना, जो एक्चुअल में दिल से पसंद आते हैं, जो हम जितनी बार सुने उतना कम लगता है, वो शायद उस गाने के साथ जुड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स इज मेलोडी, लिरिक्स, आर्टिस्ट्री, वो सब है, एंड कूडोस टू दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। बट आज मैं ना उस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे होता है दैट एक ही गाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए वो पहले ब्रेकअप का गाना है, किसी के लिए एक शाम जब वो अकेले थे छत पे बैठ के आसमान देख रहे थे, मे बी उस गाने की दो लाइन जो सीधा उनके दिल के उस स्पॉट को हिट कर गई जो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा वंस इन रेयर ब्लू मून होता है ना, कोई गाना ऐसा दिल में उतरता है कि जब हम कुछ सालों बाद उस गाने को सुनते हैं, वो गाना तो अच्छा लगता ही है, बट वी ऑल्सो रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस, उस दिन जैसा फील हुआ था। क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक इज ऑल अबाउट how it makes us feel. I want to tell you about this one song, जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए थे। साल 2016 की बात है, मेरा पहला गोवा ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ। हम वैगेटर बीच पे थे, रात को 2 बज रहे थे, मजे कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे दोस्त जैम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त गाना गा रहा था और अपना गिटार उठाया एंड उसने ये गाना गाया,
2: शाम
0: कॉल्ड शाम तन्हा बाय अग्नि। मैं पूरा गाना आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट दिस सॉन्ग मेड मी फील बैक देन। उसने कुछ अलग नहीं किया मेरे दोस्त ने, कोई ऐसे परफॉर्मेंस में चार चांद नहीं लगे, उसकी आवाज थी, समुंदर की हवा थी, या वो लाइन्स दैट तेरे जाने से मैं अधूरा रह गया, आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज इट, बट दैट सॉन्ग मेड मी वीप। मैं आंखें चुरा चुरा के अपने दोस्तों से रो रही थी, बिकॉज इट मेड मी फील समथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फील कर रही हूँ उस गाने से पहले। इट इज अ गॉर्जियस सॉन्ग, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वेरी चेरिश्ड मेमोरीज एंड वेरी चेरिश्ड सॉन्ग फॉर मी। हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज मेरी पसंद का स्पॉटलाइट अग्नि द बैंड का गाना, गाने का नाम है शाम तन्हा। ट्रस्ट मी दिस वन विल हिट होम। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है अर्ज किया है. 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर अर्ज किया है इस प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
5: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
4: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन।
9: इट्स हॉट।
10: गाना इंडी टॉप 10
11: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इस साल तो आंसर नहीं मिलने वाला है। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके डीलर इज दिस वीक का गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mujhe follow karo. Mera handle is @RJKanika. Har hafte we receive lots and lots of requests for our favorite segment of the show, which is called
1: Kanika's Kasar Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना।
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज, एक सेकंड, मैं थोड़ी ड्रामेटिक हो रही हूँ, बिकॉज दिस हैज बीन द मोस्ट रिक्वेस्टेड कैसेट क्लासिक ऑफ ऑल टाइम। मुझे इतना ऑनर फील होता है ना जब मैं वो गाने प्ले करती हूँ जिनको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड आज का कैसेट क्लासिक एग्जैक्टली वही वाला गाना है। इट्स मायरी बाय यूफोरिया। ये गाना सिर्फ यूफोरिया का डेफिनेशन सॉन्ग नहीं है, बल्कि इंडी पॉप एज अ जॉनरा का पूरा डिफाइनिंग साउंड बन गया था। एक पूरी जेनरेशन की कलेक्टिव मेमोरी है ये गाना। इवन टिल डेट आई थिंक द जेन जीज, पीपल हु आर बॉर्न आफ्टर 2000s, जब लोग इस गाने को डिस्कवर करते हैं, इसकी म्यूजिकलिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं, आई नो द सॉन्ग इज स्टिल फाइंडिंग न्यू ऑडियंस एवरी डे। बट आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू द यूफोरिया डेज। साल था 1998, केबल टीवी नया था एंड हिंदी फिल्म म्यूजिक वॉज एवरीथिंग। इंडियन इंडी जैसा कुछ ऐसा था नहीं, बट कहते हैं ना, सम पीपल हैव गॉट दैट क्रेजी इन देम। ऐसे एक आर्टिस्ट थे डॉक्टर पलाश सेन, एक्चुअली डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, लखनऊ में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े। उन्होंने अपना एक रॉक बैंड बनाया हिंदी में एंड दैट वॉज यूफोरिया। पहली एल्बम आई कॉल्ड धूम, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने डांस किया, फुल ऑन सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक। फिर साल 2000 में आई उनकी दूसरी एल्बम कॉल्ड फिर धूम, और उस एल्बम में था ये गाना मायरी। ये कुछ अलग था, कुछ अलग ही हो गया था। एंड धीरे धीरे सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था, ये गाना कहीं कहीं में आपको एक स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाता है, कहीं रोमांटिक स्पेस में, बट अंडरलाइंग इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग। लेकिन वो अपने प्यार को चेरिश कर रहे हैं, और उसको चेरिश करते हुए पलाश सेन इस गाने के थ्रू अपनी मदर को कहानी सुना रहे हैं। मायरी याद वो आयरी, कि मुझे उसकी याद आ रही है जो अब मेरी लाइफ में नहीं है, विच इज सो क्यूट। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, इससे पहले कि मैं यहाँ रोने लग जाऊँ इस गाने के बारे में बात करते हुए। द सॉन्ग विच इज मोर देन अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन, इट्स अ जर्नी बैक टू अवर चाइल्डहुड, अ लव सॉन्ग जो डॉक्टर पलाश सेन ने अपनी मदर के लिए लिखा। गाने का नाम है मायरी बाय द वन एंड ओनली यूफोरिया। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आई थिंक इस गाने के बाद कैसेट क्लासिक को हमें टाइम मशीन बुलाना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज टेकन बैक टू द टाइम. गाना जब शुरू होता है वो चार स्ट्रिंग्स बजते हैं एंड आई एम टेकन टू दिस डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ जिंदगी बहुत सिंपल है, दोस्त तुम्हारे करीब है एंड फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पलाश सेन, द जीनियस दैट यू आर, दैट वॉज मायरी बाय यूफोरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. ट्रस्ट मी, वी टेक योर रिकमेंडेशंस वेरी सीरियसली. इस गाने को प्ले करने में कुछ वक्त लग गया, बट वो जो भी गाना है फ्रॉम द 90s 2000s व्हिच यू थिंक इज स्टिल द सॉन्ग दैट डिजर्व्स ऑल द लव, हमसे आगे शेयर करो. अश्का है माय साउंड प्रोड्यूसर एंड आई विल प्ले अ सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले बार एक गाने की बारी. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है बैरन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
5: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी. सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में.
4: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल,
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी. विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी.
6: कैच ऑफिसर ब्राउन,
8: ऑफिसर ब्राउन
6: टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स. ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June.

0: Ana Indie Top 10
1: Kanika Kasat
0: on Mirchi. It's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline.
3: अरे अरे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
2: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
3: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी नहीं।
4: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: हाय हाय, ये जो फोक कपलेट्स होती है ना, जैसे बल्ले बल्ले हो गई रे, बेजा बेजा हो गई रे, ये जो शब्द होते हैं जैसे कि गबरू, मुटियार और नगाड़ा, मुझे ना ये फोक रेफरेंसेस, बोलियां, गिद्दे या फिर कुछ भी हो, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, मुझे इतने कूल लगते हैं ना इन सॉन्ग्स, मजा आ जाता है, एकदम वाइब हो जाती है सेट।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पार्लर के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपकी ये जो पूरी वाइब सेट की है आज मैंने, ये इसलिए भी की है क्योंकि कुछ खास मेहमान भी हैं मेरे साथ आज इस शो पर, जो आपसे अपनी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे और कैसे उनका गाना एकदम ऐसे टॉप पे पहुंचा, उसकी क्या फीलिंग थी, वो सब भी बातचीत करेंगे। हैंग ऑन, अभी तो शो शुरू हुआ है, बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे गाने बाकी। नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू राइट हियर इज मोहे रंग दो लाल, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना। सुनो इसको और स्टे ट्यून टू मिर्ची, क्योंकि यहाँ पर अभी कैफे में हाथ में मेरे आई है चाय, इस गाने को आराम से बैठ के सुनेंगे और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहो मिर्ची, मेरा नाम है पारुल, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आसमान में जब भी आप छोटे थे ऐसे देखकर कभी कभी क्लाउड्स की फॉर्मेशन सोचते थे कि यार ये क्या डिजाइन बन रही है, ये क्या पैटर्न बन रहा है। अब भूल गए हो ना ये करना? करो ना यार अब भी वो सब, और अपने बच्चों को भी दिखाओ अगर आप साथ में घूम रहे हो तो कहीं, क्योंकि ये जो मुंडी नीचे कर करके सिर्फ गैजेट्स में देखे जा रहे हो ना, कम ऑन यार।
1: मिर्ची कैफे।
0: सर उठा के जीना सीखो, आसमान में देखो। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और अभी आपने गाना सुना फाइटर फिल्म से हीर आसमानी, विशाल शेखर के साथ बी प्राक की भी आवाज इसमें थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ऐसे देसी रॉ रूट्स से निकल के आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आवाज का टेक्स्चर और थ्रो इतने डिफरेंट लेवल का होता है ना, इट जस्ट टचेस योर हार्ट। हाँ जी, तो जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी, आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। उन्होंने बहुत सारे चार्ट्स टॉप किए हैं और उन्हें खुद यकीन नहीं होता इस बात का कि ये कैसे हो गया। आपने ज़रूर उनका खूबसूरत सा वो गाना सुना होगा जहां पर वो अपने झांझरों के जोड़े को संभाल के रखने की बात कर रहे हैं। दिल जीतते हुए मेरे साथ इस वक्त दिलजीत नहीं दो हरियाणा के ब्रदर्स हैं जिनके नाम है अनुज एंड सुमित। मुझे ये बताओ कि जर्नी शुरू हुई कहाँ से, कब वो ऐसे कीड़ा काटा की गाना बनाना है?
2: पता ही नहीं मैम कब काटा, वो तो बचपन से ही था।
3: वैसे मेरी सेकंड क्लास से,
2: हाँ ये तो बचपन से ही चलता आया।
0: ये किसने बताया आपको, कौन बताता है कि पूरे इंटरनेशनल शज़ाम चार्ट्स में टॉप हो रहा है?
2: नहीं नहीं, हमारे उधर तो सक्सेस कोई गाना चलने का पैमाना होता है कि वो डीजे पे बज गया।
0: तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो अनुज और सुमित कि डीजे पे अगर गाना बज जाता था तो वही आपकी एक पहचान होती थी, है ना? So cute that is. And I'm sure कि बहुत दिनों से आप जहां भी जा रहे हो ना सिराई करा रहे हो आप। मुझे जब पता चला ना सिरा का मीनिंग क्या होता है when this song came in, गुरु रंधावा का, तो पहले मुझे लगा था कि जिथे भी जाने हो सिरा कराने हो मतलब ये होता होगा कि बेड़ा ही गर्क कर रहे हो जहां भी जा रहे हो। बट देन आई गॉट टू नो कि नहीं भाई, सिरा का मतलब होता है कि आप इधर कुछ कमाल कर दे रहे हो। सो कमाल करने वाले दो बॉयज दो भाई हरियाणवी मेरे साथ इस वक्त इस शो पर, बातचीत जारी रहेगी ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आप जस्ट स्टे ट्यून्ड, ओके? जस्ट डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: Love is my biggest fear because for me love is death.
4: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
6: गलती भी हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी
4: थी। Catch Officer Brown. Officer Brown tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
10: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखो बॉस, चाहे आप मुझे जज कर लो या चाहे कुछ भी कर लो, आई विल ऑलवेज बी अ लॉयल हिमेश रेशमिया फैन.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और आप मानो या ना मानो, नमस्ते लंदन पूरी फिल्म, सारे उसके गाने, दीज यू नो हैव अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज तक की कैटरीना की जितनी भी फिल्में मैंने देखी, दिस वाज द बेस्टेस्ट कैरेक्टर. और अक्षय बाजी तो फिर है ही रॉक स्टार. वेल, फिलहाल मेरे साथ यहाँ बैठे हैं दो रॉक स्टार्स, बंजारे, जिनका गाना आपने सुना होगा. मुझे एक और सवाल पूछना है आप लोगों से यार, बंजारे नाम कहाँ से आया?
2: ये मैम, हमारा जो म्यूजिक था ना, हमारे पास जैसे हम गाने लिखते भी थे तो हमें छाप भी छोड़नी थी कोई गाने को, छाप कहते हैं राइटर अपना नाम छोड़ता है या कोई कुछ छोड़ता है
0: तो छाप छोड़ने के लिए.
2: हाँ.
0: और क्यों आप अपने आप को नोमैड बुलाना चाहोगे?
2: क्योंकि हमारा म्यूजिक मैम ट्रेवल को दिखाता है.
0: अच्छा.
2: कहानियां भी कहता है, ट्रेवल को भी दिखाता है.
0: अच्छा.
2: जैसे बैरन कहानी भी है और ट्रेवलिंग भी साउंड है हमारे गाने में. आप आशिका बारा सुनोगे या हायरे सुनोगे तो वो लगेगा आपको भाई. हाँ,
3: ये बंजारा वर्ड ही उनकी एक कम्युनिटी है, वो
2: उसी से रिलेटेड. हाँ, ट्रेवलिंग भी है, स्टोरीज भी हैं, तो वही हाँ हम कहना चाह रहे हैं भी, ट्रेवलिंग और स्टोरीज.
0: कौन सी फिल्में देखना पसंद है, किस टाइप की?
3: इम्तियाज अली बहुत पसंद है.
2: हाँ जी मैम.
0: इम्तियाज अली पसंद है, तो ग्रेट. फिर तो अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ अभी यहाँ पर, फॉर बोथ ऑफ दीज बॉयज जो मेरे साथ बैठे हैं, बंजारे, अनुज और सुमित, और साथ ही आप सबके लिए जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं. नेक्स्ट सॉन्ग इज मीका पाजी की आवाज में एक बहुत ही डिफरेंट बीट वाला और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल वाला गाना, फ्रॉम द फिल्म तमाशा, इम्तियाज अली के ऑल ऑल लवर्स के लिए. हियर इट गोज. सुन रहे हो मिर्ची, इट्स ऑल.

0: राम राम भाई सारे ने
1: आप सुन रहे हो बंजारों को ऑन मिर्ची कैफे ओनली ऑन रेडियो
0: मिर्ची
1: मिर्ची पारुल जी के साथ
2: मिर्ची कैफे।
3: अब मुझे आप दोनों गा के सुनाओगे अपना बनाया हुआ अपना फेवरेट गाना, क्या वो बैरन ही है या कुछ और है?
0: पहले हम बैरन ही सुनाते हैं आपको।
3: जरूर।
4: हमने सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी बावले से होरे, मने आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीण को नी देती है बैरी तन आई मने, गीता में गाई कदे छाती के लगाई मने,

ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बंजारे मेरे साथ हैं दोनों और बहुत ही प्यारे हरियाणवी लोग हैं ये दो और हमने इतनी सारे मस्ती करी, गाने गाए, बड़े मजे आए। मैं आपको सुनाऊंगी मिर्ची कैफे पर इनका गाना खूबसूरत बंजारे, जिसमें आपको अपना बटुआ, अपने झांझर सब याद आ जाएंगे और छाती से लगा के हम सब इस गाने को घूम रहे हैं लिटरली। एंड दिस इज फॉर यू ऑन मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची विद मी पारुल। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

पावर्ड बाय आईपी, बेस्ट रेट, नो स्ट्रेस, आईपी वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपी, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Let's do the

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
1: अबे लल्लू ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: अगर हम सोचें तो क्या किसी ने हमें ये प्रॉमिस करके भेजा था कि लाइफ एकदम परफेक्ट चलेगी, एकदम स्मूथ चलेगी, मक्खन की तरह मजा आ जाएगा, बस जीते रहो खुश रहो। नहीं ना,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और अभी ये जो मैं रांझण सुन रही थी परंपरा की खूबसूरत आवाज में, तो मुझे ये लगा कि यार उतार चढ़ाव, यू नो, एज क्लीशे एज इट साउंड्स, अगर आप रोलर कोस्टर में भी बैठे हो और सीधे सीधे चलते जाएं तो नहीं मजा आएगा ना यार। पता है, जब भी प्रॉब्लम्स में होते हैं ना आप, तभी हमें रियलाइजेशन होती है कि पिछला वक्त तो कितना कूल था यार, ये सब तो अभी देखने को मिल रहा है। बट जब हम किसी हैप्पी फेज में होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ब्रो, यू नो, यू जस्ट अर्नड इट, और खुल के जियो, मस्ती करो और ग्रेटफुल रहो, सबसे बड़ी बात। एंड बाय द वे, ये गाना सुनते सुनते मुझे इतनी फिलेंथ्रोपी इसलिए आई क्योंकि इसमें ना बीच में एक लाइन आती है, लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पौंदा, मांगे तेरी खैर नहीं। तो अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा शख्स है जो आपको पता है कि वो आपके लिए चुपचाप एक प्रेयर बोलता है रोज, जस्ट यू नो, हग दैट पर्सन टाइट टुडे। किसी दिन का थोड़ी इंतजार करना होता है यार, हर मोमेंट हर दिन खूबसूरत है, जस्ट फील दैट, ओके। और अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस फिल्म का नाम भी ये था, पता है, लकी, नो टाइम फॉर लव। तो जब तक आपके पास वो टाइम है, प्लीज यार, काइंडनेस एंड लव आर टू थिंग्स यू शुड नेवर मिस ऑन। बाय गॉड, ये जैसे ही मैं आपको गाना सुनाऊंगी आप कहोगे हैं ये कहां से निकाल के आई, इतने दिनों बाद सुना ये गाना, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में, सुनो ये गाना। और इसमें ना बीच में एक ऐसी बीट आती है, टक टक टाडुंग, वो साथ साथ गाना, इतना मजा आता है ना, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लो, सुनो ये गाना ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

0: सुना ये गाना ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे आने वालों के साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा. धीरे धीरे

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabbala.
1: Burga, burga. La vieta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया।
4: और
3: अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है

0: उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में।
0: सिर्फ तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
0: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शॉप।
0: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: क्या ये गाना आपको भी लेकर गया वहां पर जहां पर सैफ अली खान और प्रीति जिंटा मिलकर ये डांस कर रहे हैं क्यूट सा। यार शान की आवाज सैफ को इतना सूट करती है जैसे कि और कुछ नहीं कर सकता। एंड यू नो व्हाट, ये जो फीमेल सिंगर हैं इस गाने की, गायत्री अय्यर, ये हैं कुणाल गांजावाला की वाइफ। कुणाल गांजावाला, यू रिमेम्बर? ऑफ कोर्स। सो कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं, बट उनको सुनते ही आपको वो इंसान याद आ जाता है। सो यस, फॉर दोज हु डोंट नो, ये गाना गाया था गायत्री अय्यर ने, जो कुणाल गांजावाला की वाइफ हैं।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे, मेरे आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। वेल, आजकल ये जो धुरंधर फिल्म जब से आई है ना, ये पहले वाले गानों को एक स्टाइलिश वर्जन में रिवैम्प जो मिला है। बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो दोबारा आए तो हम सबको लगा कि ये क्यों कर दिया इस गाने के साथ, बट आई मस्ट गिव इट अप फॉर शाश्वत। यार शाश्वत ने जिस तरीके से पुट टुगेदर किए हैं वो गाने जो पहले वाले थे, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक फाइट सीक्वेंस में इस तरीके से हम ये गाने सुनेंगे। अगला जो गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, इट इज़ अ रिक्रिएशन ऑफ हम प्यार करने वाले। किसने सोचा था कि ये गाना इस वर्जन में हमें ड्यूरिंग अ फाइट देखने को मिलेगा और इतना कूल लगेगा। सो बेसिकली ना, कई लोग ये बता रहे हैं धुरंधर के गानों को डिकोड करके कि एक मजेदार पैटर्न है शाश्वत का। वो क्या करते हैं, एक पुराना गाना उठाते हैं, उसको एक डिफरेंट बीट पे रखते हैं, साथ में एक कुछ इंग्लिश वोकल्स वहां पे रैप के चल रहे होते हैं, और वो ऐसी मिक्सिंग करके रिक्रिएट करते हैं कि आपको सुन के लगता है व्हाट एन अपलिफ्टिंग गाना दिस इज, व्हाट अ बीट। So, if you also agree with me, let's give it up for all the makers of Dhurandhar और सुनते हैं ये गाना only on Mirchi Cafe। आप सुन रहे हैं Mirchi मेरे यानी पार्लर के साथ। Please stay tuned। इसके बाद मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए एक बहुत ही magical चीज।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: आई एम श्योर आपने अपने शोल्डर्स को थोड़ा थोड़ा हिलाकर थोड़ा थोड़ा डांस तो किया होगा इस गाने पर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। यार मुझे याद आ गया वो जमाना जहां पर शाहरुख के इतने क्यूट गाने होते थे, डांसेस होते थे, सोनू निगम, अलका याग्निक ऑलमोस्ट हर दूसरे गाने गा रहे होते थे, एंड व्हाट टाइम्स ना यार, इतने फील वाले गाने होते थे उस वक्त। आई एम नॉट दैट कि अब फील वाले गाने नहीं आते, अभी भी अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स आई रियली लव, लेकिन क्योंकि उस जमाने की बात हो रही है तो मैं आपके लिए अपने टाइम मशीन में जाकर खजाने से एक गाना लेकर आई 1995. Okay, now listen to the description of this song. Okay, जो अगला गाना आपके लिए आने वाला है मिर्ची कैफे पर, वो गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने. Okay, ये जो फिल्म थी ना, इसमें I think last आपने उस हीरो को देखा होगा as a kid actor in मासूम, और उसके बाद आपने देखा इनको यहाँ पर. The name is Jugal Hansraj. The heroine was Mayuri Kango. A very very different kind of film this was. बहुत ही cute nostalgic feeling. इस फिल्म का नाम था पापा कहते हैं, और इसका सबसे फेमस जो गाना था वो नहीं सुनाने वाली हूँ मैं भी आपको, वो था घर से निकलते ही. लेकिन अभी जो मैं आपके लिए गाना चलाने वाली हूँ वो है प्यार में होता है क्या जादू. अगर आपने इस गाने को नहीं सुना है, स्पेशली जो जेन ज़ी, प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग. ये आज भी उतना ही फ्रेश साउंड करता है. मैंने कहीं तो सुना अभी और मुझे लगा कि आई शुड गेट दिस सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची कैफे और मैं आपको सुनाऊँ. जो मेरे जैसे मिलेनियल्स हैं उनको ये गाना सुनकर पक्का से नॉस्टैल्जिया आएगी. आपको कौन सा गाना पसंद है, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930983983, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं parul.world करके. प्लीज राइट टू मी कि आपको मिर्ची कैफे कैसा लगता है, और आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सा गाना सुनना है अगले एपिसोड में. प्लीज डू राइट टू मी, आई लव रीडिंग ऑल द मैसेजेस. ओके, फिलहाल सुनिए इस गाने को, आई विल जस्ट बी राइट बैक.

0: बुक में अभी कुछ वक्त पहले एक चीज पढ़ी और मुझे वो इतनी स्वीट लगी दैट आई हैड टू रीड इट आउट फॉर यू. ठीक है, सुनो इसको ठीक से सुनना, हाँ वॉल्यूम तेज कर लो. खुशी तब मिलती है जब हम उसे ढूंढ नहीं रहे होते. अगर आप याद करें, खुशी आइसक्रीम थी, लड्डू थी, टूटता तारा थी, तय किए हुए कपड़ों में अचानक से मिला हुआ वो नोट थी, हर वो चीज थी जो हमें चाहिए तो थी शायद, पर हम कभी ढूंढ नहीं रहे थे.
1: मिर्ची कैफे.
0: लवली थॉट, राइट? सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पार्लर के साथ. और इस नोट पर आज नहीं, मेरे को अपनी पॉकेट में कोई नोट नहीं मिला है. आई मेंट कि इस तरीके से मैं आज के शो को टाटा करना चाहती हूँ, आप सबको टाटा करना चाहती हूँ, और इसी प्रॉमिस के साथ कि मैं दोबारा आऊंगी बहुत जल्दी आपके लिए. यहीं पर मेरे शो का नाम है मिर्ची कैफे, मेरा नाम है पारुल और आप हैं मिर्ची पर इस वक्त. ऑलवेज रिमेम्बर यार, जब कभी कभी बिना ढूंढे ही आप हैप्पी फील करते हो ना, बिना रीजन के, वो ही सबसे प्यारा रीजन होता है. और उस रीजन को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि इंसानों में या किन्हीं चीजों में जो खुशी हम ढूंढते हैं वो टेम्पररी होती है गाइज. इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम समवेयर यू कांट इवन इमेजिन, क्योंकि सपनों से भरे तो हम सबके नैना है यार, लेकिन खुशियों से भरा दिल हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब इस कॉन्वर्सेशन को ज्यादा ज्ञानी ना बनाते हुए, लेट मी से अलविदा टू यू. ऑल्दो सम पीपल विल से कभी अलविदा ना कहना, बाबा मैं अभी बस खाली ऐसे टेम्पररी अलविदा कह रही हूँ. सुनो इस गाने को, शंकर महादेवन का गाया हुआ अमेजिंग ट्रैक, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रॉक रॉक
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और उर्दू अदब में ना एक्चुअली कई सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में बहुत बार जो प्रियतम होता है, जो प्रिय होता है, वही ईश्वर होता है। हाँ हाँ,
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और उर्दू अदब में ना एक्चुअली कई सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में बहुत बार जो प्रियतम होता है, जो प्रिय होता है, वही ईश्वर होता है। हाँ हाँ, कई बार

ईश्वर भी हो सकता है। अब आप शमीम अब्बास का ये शेर देखें, कहते हैं कि कभी मैं कदा कभी बुत कदा, कभी काबा तो कभी खानकाह, कभी मैं कदा कभी बुत कदा, कभी काबा तो कभी खानकाह, ये तेरी तलब का जुनून था, मुझे कब किसी से लगाव था। आए हाय हाय हाय हाय, और ये तलब किसकी है यार, ये तलब ही तो उसकी है जो वो जो रोशनी है सफेद, है ना, जिसमें हम सबको एक दिन मिल जाना है, उसी की तो तलब है। कभी मैं कदा कभी बुत कदा, कभी काबा तो कभी खानकाह, ये तेरी तलब का जुनून था, मुझे कब किसी से लगाव था। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, वेलकम टू द शो, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: on Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Naveed wala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: बेटा अब घर आजा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
3: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
4: बेटा आजा रे, आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
3: हेलो
4: बेटा।
3: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
4: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला जाएगा ना बेटे। क्या हो गया हमारा?
3: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
4: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
3: अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
4: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
3: अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
4: बेटा देख, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
3: माता जी से बात करा दीजिए।
4: बेटे आजा आजा बेटे।
3: अंकल माता कहाँ है?
4: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
3: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
4: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
3: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
4: अरे बात मेरे बात,
5: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो
4: बेटा। हेलो
3: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
4: बेटा घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
3: अरे अंकल, मेरे बात कर, मैं अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया?
4: मैं तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटा।
3: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
4: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
3: क्यों?
5: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
3: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
5: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
3: बोलना जरूरी है?
5: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
4: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर कफील आजर अमरोहवी साहब से। मुंबई में इनका जन्म हुआ और फिल्म गीतकार भी रहे। इनकी नज्म बड़ी फेमस है, आपने पक्का सुनी होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर। अब जितनी बात करी जाए इनके बारे में उतनी कम, लेकिन इनके कुछ शेर आपको मैं सुनाऊं कि पहला तो इनका शेर ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है, कहते हैं कि उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है, एक एक बात में सच्चाई है उसकी लेकिन अपने वादों से मुकर जाने को जी चाहता है। कफील आजर अमरोहवी साहब से आज मैंने आपको रूबरू कराया, इनको और पढ़ें एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और दोस्त, ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई राइटर आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, क्योंकि राइटर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, कोई भी इंसान जो आर्ट प्रैक्टिस करता है वो आप ही के फीचर्स आप ही को ऐसे बता देगा ना कि आप हतप्रभ रह जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसीलिए हर कोई राइटर्स या फिर यू नो म्यूजिशियंस इन सब के साथ प्यार में पढ़ना चाहता है, उनकी म्यूज बनना चाहता है। कलीम आजिज साहब का शेर देखें, कहते हैं कि इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको। इतना प्यारा शेर है ना ये, इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे, बरहम मतलब बिखरे हुए। इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे। हाँ, कौन कह रहा है कि बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लगते तुम्हारे। इधर आओ, जरा लिख के बताता हूं अभी एक गजल, फ्लैट हो जाएंगे सबके सब, है नहीं तो पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। और प्यार तो दोस्त देखने वाले की आंख में होता है कि नहीं। You know what I say? It's hot.

0: on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे। आज का ताशी अनप्लग्ड आपके लिए और आज जो नगमा मैं आपके लिए नजर कर रहा हूं उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी जी, उसे कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने और आवाज दी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर जी ने। और ये नगमा मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें रंगरेज एक लफ्ज है जिसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रंगरेज जो लफ्ज है उसके दो मानी आते हैं, एक तो वो इंसान जो आपके कपड़े रंगता है, दूसरा वो ऊपर वाला जिसने हर किसी को एक रंग से रंग के भेजा है। है ना, बहुत खूबसूरत नगमा है, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स और आपके लिए नजर है ओ रंगरेज़।

0: on Mirchi. It's hot.
1: 89.6.
0: It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ।
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ, और जिससे आप इश्क करते हैं, जो आपकी माशूका है या फिर माशूक हैं, जो आपके आशिक हैं, उनके साथ वक्त बिताना भी ना एक तरीके का नशा होता है दोस्त। कसम से एक नशा है जो कि ऐसा सर चढ़ जाता है ना कि उनको छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि यार ये वक्त कहाँ चला गया, मैं कितनी देर था यहाँ पे, कुछ अंदाजा नहीं रह जाता। मुरीर नियाजी साहब का एक शेर देखें आपको नजर है, कहते हैं कि ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं। खुमार मतलब इंटॉक्सिकेशन। ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में हूं। हाय हाय हाय हाय हाय, कितने खूबसूरती से लिख दिया है कि इमोशंस ना रजिस्टर ही नहीं हो पाते। ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में हूं। है कि नहीं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कुछ मजेदार प्यार रहा होगा वो। क्या किस्सा था, थोड़ा हमको भी बताओ। इंस्टाग्राम पे मिर्ची ताशी MIRCHITASHI के नाम से आपको मिल जाऊंगा, वहां पे करो मुझे मैसेज एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आपका ताशी आज के कविता कॉर्नर में अशोक वाजपेयी साहब की कविता का एक टुकड़ा आपको सुनाए जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी। कविता आगे भी और है, पढ़िएगा। अशोक वाजपेयी साहब की वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कृतियों में से एक है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
0: मिर्ची इट्स हॉट। अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और ट्रॉमा इसी को तो कहते हैं, जब दर्द चला जाए लेकिन उस दर्द की जो हुक है वो बाकी रह जाए। फहमीदा रियाज साहिबा की गजल का एक शेर आपको नजर करता हूँ, कहती हैं कि चलते चलते कुछ थम जाना फिर बोझल कदमों से चलना, चलते चलते कुछ थम जाना फिर बोझल कदमों से चलना, ये कैसी कसक सी बाकी है जब पाँव में वो काटा भी नहीं। आय हाय हाय, कितनी सटीक तरीके से डिस्क्राइब करा है ट्रॉमा को कि भाई साहब कुछ बुरा होता है आपके साथ जब, तो वो बुरा तो गुजर जाता है लेकिन वो बुरा होने के बाद आप वो इंसान नहीं रह जाते जो बुरा होने से पहले आप थे। चलते चलते कुछ थम जाना फिर बोझल कदमों से चलना, ये कैसी कसक सी बाकी है जब पाँव में वो काटा भी नहीं। Stay tuned to Mirchi Mehfil, आपका ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी. सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में.
3: निमरत कौर आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल.
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफ़े और कर दे आपके नज़र। तो ना मेरी एक छोटी बहन है, वो मुझसे बात कर रही थी, वो बोली छोटी बहन, वो मुझसे बातचीत कर रही थी और कॉलेज वॉलेज गई है, तो उसने बोला कि ताशी भैया एक लड़का है मुझे पसंद आ रहा है और ऐसा वैसा दुनिया जहान। मैंने बोला छोटी देख ले, मतलब रिलेशनशिप में इस वक्त पे तो आना कोई सेंस ही नहीं बनाता मेरे ख्याल से। तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार अभी जैसा तेरी उम्र है ना 19, 18, 20, ये वक्त ना इंसान घूम बहुत रहा होता है, मतलब बहुत एक्टिव होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाता है ना, उसके ठिकाने बदलते रहते हैं, कल का कुछ पता नहीं होता। ऐसे वक्त में किसी के साथ हाथ जोड़ के कोई पक्का ऐसा वादा करके, वो उमर अंसारी का शेर है ना कि मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार ना कर। आए हाय हाय, यही शेर बोल दिया मैंने उससे, फिर और क्या कहता। और यार ये जो 5 साल होते हैं ना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि 18 से लेकर 23, 24, ये जो 5 साल होते हैं, इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, इधर उधर घूमता रहता है कि इस वक्त पे किसी पक्की चीज़ में बंध जाना, अरे किसी का अगर हो रहा है तो बिल्कुल बंधे, मतलब माशाल्लाह उससे बेहतर और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ। आपको क्या लगता है बताइए मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ओह यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन, टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और हाल ही में हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बड़ी खूबसूरत रचना कविता मेरे पढ़ने पड़ी और पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि आपको सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है मैंने गा कर दुख अपनाए, कभी न मेरे मन को भाया, जब दुख मेरे ऊपर आया, मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुझे बचाए। मैंने गा कर दुख अपनाए, कभी न मेरे मन को भाया, जब जब मुझको गया रुलाया, कोई मेरी अश्रु धार में अपने अश्रु मिलाए। मैंने गा कर दुख अपनाए, पर न दबा ये इच्छा पाता, मृत्यु सेज पर कोई आता, कहता सिर पर हाथ फेराता, ज्ञात मुझे है दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए। मैंने गा कर दुख अपनाए। कविताएं, गजलें, गीत यही तो करते हैं। जब कोई नहीं होता जिससे आप अपना दुख बांट सके तो वो आपका सहारा बनते हैं, आपका ढांढस बढ़ाते हैं। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
0: स्पीकिंग।
1: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा।
1: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
0: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
1: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
1: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
0: आ सकती हूँ मैं उसमें?
1: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
0: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
1: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
0: आपका क्या है?
1: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
0: ठीक है।
1: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
0: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
1: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही हैं।
0: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
1: हेलो,
0: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
1: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल कि
1: आपका ताशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स से जो कि है फुरकत। फुरकत मतलब जुदाई है ना, और जुदाई का मतलब फुरकत के जमाने जैसे आते हैं, जुदाई के जमाने आते हैं, है ना। अब इसका मैं शेर में इस्तेमाल करूं आपको तो मैं तशुक लखनवी साहब का आपको एक शेर सुनाता हूं, ठीक है। कहते हैं कि हम किसको दिखाते शब फुरकत की उदासी। अब शब फुरकत मतलब जुदाई की शाम, जुदाई की रात, है ना। कहते हैं कि हम किसको दिखाते शब फुरकत की उदासी। सब ख्वाब में थे रात को बेदार हम ही थे। बेदार मतलब जो उठा हुआ हो, जिसके जिसको नींद ना हो, है ना। हम किसको दिखाते शबे फुरकत की उदासी। सब ख्वाब में थे रात को बेदार हम ही थे। ये तभी होता है जब ऐसे रात को कभी उठे हो एक दो बजे और उदासी खटखटाए, तो कॉल भी किसको किया जा सकता है यार, एक दो बजे तुम ही जगे हो सिर्फ, है ना। तो बढ़िया गजलें सुनते हो और रात अपनी उन्हीं के हवाले कर देते हो, है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी आपके साथ। एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और तारीफ करो तो ऐसे असर लखनवी साहब का हाल ही में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैंने शेर पढ़ा और ये जो शायर जितने जनाब हुए और साहिबाएं हुई इनका तारीफ करने का भी जो लहजा होता था ना वो इतना अनोखा होता था कि इंसान तारीफ सुन के गदगद हो जाए। कहते हैं असर साहब कि तुम्हारा हुस्न आराइश मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए जो चीज़ें लगाई जाती हैं खूबसूरत है मतलब तुम्हारा हुस्न आराइश तुम्हारी सादगी जेवर तुम्हारा हुस्न आराइश तुम्हारी सादगी जेवर तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं बनने सवरने की। आए हाय क्या बात है। और ब्यूटी जो है ना मतलब बनने सवरने के जो लोग इंटरेस्टेड हैं दिस इज नॉट एन अटैक ऑन यू एट ऑल, आप बनो सवरो जितना जरूरी है, लेकिन एक जो ब्यूटी होती है ना जो झटक के जुल्फ जब वो तौलिए से बारिशें आजाद करती है, आए हाय अच्छा लगता है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ, यू नो व्हाट आई से, It's hot.

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरा मिर्ची महफिल से जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: लेकिन उससे पहले मौका है, दस्तूर है कि आप कताशी नजर करें। आज कताशी अनप्लग्ड आपके लिए, और आज जो नगमा मैं आपके लिए नजर कर रहा हूं उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी जी। उसे कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने और आवाज दी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर जी ने। और ये नगमा मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें रंगरेज एक लफ्ज है जिसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि रंगरेज जो लफ्ज है उसके दो मानी आते हैं, एक तो वो इंसान जो आपके कपड़े रंगता है, दूसरा वो ऊपर वाला जिसने हर किसी को एक रंग से रंग के भेजा है, है ना। बहुत खूबसूरत नगमा है, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स, और आपके लिए नजर है ओ रंग।

मुलाकात होती है हफ्ते के उस पार। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल। और अगर आप मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hello, Mirchi Helpline.
1: अरे अरे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, बता सवाल क्या है?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
2: उठा ले।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।